सुप्रभात, नमस्कार। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार, शक संवत 1948, श्रावण माह की तिथि 2, तदनुसार 24 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग एंड शिवाजी स्टेडियम. हाउएवर, डीएमआरसी नोटेड दैट द इंटरचेंज फैसिलिटी विल रिमेन अवेलेबल एट राजीव चौक, मंडी हाउस एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. The center has appointed secretaries in different ministries and departments. Vineet Doshi, who is presently Secretary, Higher Education in Ministry of Education, has been appointed as the Secretary, Ministry of Panchayati Raj. Naresh Pal Gangwar will be the new Secretary, Higher Education. T.K. Anil Kumar will be the Secretary, School Education and Literacy. The Appointment Committee of the Cabinet approved these appointments. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं. अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार. अब प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित्र मानस गान. आज के गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिथाली सिंह की आवाज में सुनते हैं ये रामचरित्र मानस गान.
2: एपिसोड नंबर 146 146.

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातःकाल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवठरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल की आवाज में आप सुन रहे थे यह भक्ति संगीत। अगला भक्ति संगीत हम सुनते हैं सुरेश वाडेकर की आवाज में।

एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम, आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, अब से आप कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 6:45 में सुगम संगीत का कार्यक्रम। प्रातः के 7 आप सुनेंगे चौहार चाईबासा कार्यक्रम। प्रातः के 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे 8:15 में अंग्रेजी में समाचार। प्रातः के 8:30 में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोताओं, 8:40 में आप सुनेंगे माटी की महक, जिसमें आज आप सुनेंगे गुरमाली लोकगीत शिवनाथ महतो और साथियों के स्वर में। प्रातः के 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। 9:30 में आप सुनेंगे रस रंजन कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम। प्रातः के 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसके प्रायोजक हैं NCERT। प्रातः के 10:30 में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। 1:10 में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:20 में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। 2:55 में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

श्रोताओं, 3 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। 4 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:02 में आप पुनः सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। संध्या के 5 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 5:02 में आप सुनेंगे आकाशवाणी चाईबासा के कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 5:05 में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार। संध्या के 5:30 में आप सुनेंगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा की जाएगी मक्के एवं मूंगफली की खेती एवं देखभाल। साथ ही आनंद लेंगे कुरमाली लोकगीत का राह महतो व साथी। भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी लेंगे रेशम कीट पालन से रोजगार। भेंटवार्ताकार होंगे मानिक चंद्र कुम्हार और उनसे बातचीत करेंगे सुरेश चंद्र सोए। कार्यक्रम के अंत में आप आनंद लेंगे उड़िया लोकगीत का जितेन प्रधान व साथी। 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

श्रोताओं, संध्या के 6:02 में आप सुनेंगे कार्यक्रम हुआ कड़ा। 6:30 में आप सुनेंगे नन्ही दुनिया कार्यक्रम। 6:55 में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे समाचार। 7:15 में आप सुनेंगे आपकी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम। संध्या के 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:15 में आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आठ बजकर 45 में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:00 आप सुनेंगे इंग्लिश न्यूज। 9:15 में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल का रिकॉर्डिंग, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 में आप सुनेंगे इंग्लिश न्यूज, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 11:10 में सभा समापन की घोषणा की जाएगी।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

श्रोताओं, जोहार चाईबासा कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूँ आशा मणि गोप। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फिल्म का पहला गीत हमने लिया है। साजन बिना सुहागन गायक कलाकार हैं यशुदास।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंधी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का अगला गीत हमने लिया है तीसरी मंजिल। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं जोहार चाईबासा का कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है आए दिन बहार के, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है। फिल्म का नाम है सती सावित्री। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मन्ना डी की आवाज़ में सुनते हैं यह गीत।

0: भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: मोर नाम मंगलोरा एक गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम्हें ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
5: ये तुम लोग बुरंग सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरे में ना आया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिटा
6: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनि में बुरी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दूर दम कोई यंत्र जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन

0: बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत है। एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। अगला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है घर, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। अगला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है शक्ति।

एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से आप कुछ ही पलों में आप सुनेंगी समाचार प्रभात, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 8:30 में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोड बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
6: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
6: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
5: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
7: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
8: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का

0: आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेज न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his 100-

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट पेपर लीक रोकने के लिए आज नए कानून के मसौदे और फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन पर करेगी चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष त्वरित अदालत का किया गठन। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी छापे कार्रवाई। पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची आवास पर छापेमारी, दस्तावेज खंगाले गए। कोडरमा में एनआईए की छापेमारी। साल्टोरा ब्लास्ट मामले में भारी मात्रा में डेटोनेटर के साथ दो गिरफ्तार। 16 लाख रुपए और 5 डिजिटल डिवाइस भी जब्त। मानसून की सक्रियता के बीच रांची मौसम केंद्र ने आज रांची समेत राज्य के 13 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात की जताई आशंका। और रांची में संपन्न हुई 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस स्पोर्ट्स मीट 2026। मेजबान रांची जिला बना ओवरऑल चैंपियन। खूंटी दूसरे स्थान पर रही। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए तैयार विशेष मसौदे पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इस ऐतिहासिक कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। इधर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद गुरुग्राम के अस्पताल में अपना अनशन समाप्त कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। शिक्षा सुधार और पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे वांगचुक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच टीम ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची स्थित आवास पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रांची के अरगोड़ा थाना में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यालय घेराव के दौरान कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से पथराव किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए।
2: जिस प्रकार से उन्होंने पत्थर बरसाए और उसमें हमारे कई कार्यकर्ताओं को काफी गंभीर चोटें आई है और इसलिए हम लोगों ने आज जिनको चोट लगी थी, संजय चौधरी जी, उन्होंने भी एफआईआर किया है। पार्टी की ओर से वरुण साहू जी अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी यहां पर एफआईआर किया है कि उन लोगों के ऊपर, जिन जिन लोगों ने ये कार्रवाई पत्थर चलाए उनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए।
0: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने गहन मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण एसआईआर कार्य की समीक्षा करने का बड़ा कदम उठाया है। लापरवाही बरतने पर कई अंचल अधिकारियों और अधिकारियों का वेतन रोकने तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

0: एनआईए ने झारखंड के कोडरमा में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साल्टोरा ब्लास्ट मामले में हुई इस छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने 1662 डेटोनेटर, 16 लाख रुपए नकद और 5 डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पचम्बा के बिरसा नगर में योजना का लाभ पाकर गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल रहे हैं। लाभार्थियों ने बताया कि मिट्टी और खपड़ैल के घरों से मुक्ति मिलने से उनकी जिंदगी आसान हो गई है।
1: पहले हम लोग घर जो था वो खपड़ा का था, उसमें बारिश जब होती थी तो पूरा पानी टपकता था, उससे रहने में बहुत दिक्कत होता। तो हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किए तो उसमें हम लोग को सुविधा मिला उसका, उससे हम लोग घर बनाए, कुछ अपने पैसे मिला के घर बनाए, कोई दिक्कत नहीं होता है इस तरह का रहने में। खुश है हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना पाकर।
0: धनबाद के कतरास में CISF ने कोयला चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। सुरक्षा बलों ने केशलपुर कोलियारी अस्पताल के पास चल रहे 3 अवैध कोयला खदान मुहानों को बंद कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में कोयले से भरी बोरियां जब्त की गई हैं। धनबाद पुलिस ने कुख्यात प्रिंस खान गिरोह की बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है। भूली ओपी क्षेत्र से गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों आरोपी स्थानीय कारोबारियों की हत्या की योजना बना रहे थे।
2: छोटू कुरेशी एवं शोएब कुरेशी है, ये लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा बम एवं तकरीबन 4 जिंदा राउंड्स भी मिले हैं। ये लोग बी पॉलिटेक्निक के पास एकत्रित होकर प्लानिंग कर रहे थे कि घटना को अंजाम देना है। उसी के दरमियान पुलिस के द्वारा दबिश देते हुए उनको अरेस्ट कर दिया गया है।
0: रांची रेल मंडल के कितासिल्ली खंड पर प्रस्तावित ब्लॉक रद्द कर दिया गया है। इसके कारण वर्धमान हटिया, खड़गपुर हटिया, आसनसोल रांची और हटिया सांकी रूट की ट्रेनें आज अपने निर्धारित समय और मार्ग पर सामान्य रूप से परिचालित होंगी। मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू समेत राज्य के 13 प्रमुख जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार मानसून की सक्रियता के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रांची में 3 दिवसीय दक्षिणी छोटा नागपुर पुलिस स्पोर्ट्स मीट का भव्य समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में मेजबान रांची जिला ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि खूंटी को दूसरा स्थान मिला। अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए खेलों को पुलिस अनुशासन के लिए बेहद जरूरी बताया। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के आवास पर CBI छापेमारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, BJP कार्यालय घेरने पहुंची, कांग्रेस के साथ भाजपा की भिड़ंत, 2 घंटे बवाल। प्रभात खबर ने लिखा है, काफिले में गाड़ी बढ़ी, किशोर ने CM को दिया धन्यवाद। हिंदुस्तान लिखता है, सिक्किम के श्रमिकों का शव आज रांची लाए जाएंगे। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लॉन बॉल्स में रांची की रूपा रानी का शानदार प्रदर्शन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट पेपर लीक

रोकने के लिए आज नए कानून के मसौदे और फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन पर करेगी चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष त्वरित अदालत का किया गठन। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची आवास पर छापेमारी, दस्तावेज खंगाले गए। कोडरमा में एनआईए की छापेमारी। साल्टोरा ब्लास्ट मामले में भारी मात्रा में डेटोनेटर के साथ दो गिरफ्तार। 16 लाख रुपए और 5 डिजिटल डिवाइस भी जब्त। मानसून की सक्रियता के बीच रांची मौसम केंद्र ने आज रांची समेत राज्य के 13 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात की जताई आशंका। और रांची में संपन्न हुई 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस स्पोर्ट्स मीट 2026। मेजबान रांची जिला बना ओवरऑल चैंपियन, खूंटी दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आप सुन रहे थे समाचार।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी की महक, जिसमें आज आप सुनेंगे कुर्माली लोकगीत सहदेव महतो और साथियों के स्वर में।

श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से आप सुन रहे हैं माटी की महक, जिसमें आज आप सुन रहे हैं कुरमाली लोकगीत सहदेव महतो और साथियों के स्वर में।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे सहदेव महतो और साथियों के स्वर में यह गीत।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ हूँ आशामणि गोप। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल दिवस है, यानी स्वयं की देखभाल। हर साल 24 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। यह एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है जो 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता और अभ्यास को दर्शाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल माह 24 जून से 24 जुलाई का अंतिम दिन है, जो वैश्विक स्तर पर प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। श्रोताओं, स्वयं की देखभाल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग, परिवार और समुदाय स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की सहायता से या उसके बिना उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और बनाए रखते हैं, बीमारियों से बचाव करते हैं और बीमारी और विकलांगता से निपटते हैं। स्वयं की देखभाल का अर्थ है विशेष रूप से तनाव के समय में अपनी खुशी और कल्याण की सक्रिय रूप से रक्षा करना। यह एक ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो लोगों को जल्दी और आराम से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में सक्षम बनाती है। श्रोताओं, स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी स्वास्थ्य देखभाल में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बोझ कम हो और साथ ही रोगियों को उनके उपचार के केंद्र में रखा जा सके। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उपाय किसी भी समय स्वास्थ्य सेवा चुनने और प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियां स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को प्रतिस्थापित करने के बजाय उन्हें और बेहतर बनाती है। ये एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा रणनीति का हिस्सा है जो प्राथमिक देखभाल और सार्वभौमिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। श्रोताओं, अगर हम इसके इतिहास को देखें तो ब्रिटेन स्थित संस्था इंटरनेशनल सेल्फ केयर फाउंडेशन ने वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय सेल्फ केयर दिवस की शुरुआत की थी। तब से यह दिवस प्रतिवर्ष एक विशिष्ट विषय के साथ मनाया जाता है, जिसका केंद्र बिंदु स्वयं की देखभाल के महत्व पर केंद्रित है। यह मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाने और स्वयं की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। श्रोताओं, इस वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल दिवस का विषय है स्वास्थ्य देखभाल आपके स्वास्थ्य को आपके हाथों में देती है, जांच करें, निगरानी रखें, स्वस्थ रहें। यह विषय नियमित स्वास्थ्य जांच और दैनिक आदतों पर नज़र रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है, ताकि लोग अपनी स्वास्थ्य स्थिति को समझ सके और समय रहते कदम उठा सके। श्रोताओं, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। संतुलित आहार, फाइबर युक्त

0: और पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना, प्रतिदिन व्यायाम करना, 3 से 4 लीटर पानी पीना, शरीर की स्वच्छता बनाए रखना, साथ ही सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। सकारात्मक सोच व्यक्ति को तनाव से मुक्त रखता है और वह अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। इस चर्चा के बाद श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं यह संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नाकागी आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव वाले जरा आड़की थाना तो ये जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रसूने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो था तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: मुतुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में उन्हीं उन्हीं ने बागिया तो कि दोनों से यार सी कोलो पुलिस कोलो उन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दूर दम गया तब जाए तेरे काका बुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाइ रो जिता हुरा रे मिनाइ रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आ गया बेटा हुरेन का अले आया न तुम तेरे ना आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
10: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आप सबका पुनः स्वागत है। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल दिवस है। श्रोताओं, वर्तमान समय में कार्यों की व्यवस्था के कारण, अत्यधिक कार्य हो जाने के कारण हम स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। स्वयं के साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का देखभाल बहुत ही जरूरी है। परिवार के किसी सदस्य को अगर स्वास्थ्य में तकलीफ होती है तो पूरा परिवार इसमें चिंताग्रसित हो जाता है। तो ऐसे में स्वयं के साथ अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की देखभाल बहुत ही जरूरी है। अगर शरीर में किसी तरह की समस्या आती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी प्रकार की दवा का सेवन ना करें। श्रोताओं, इस चर्चा के बाद आइए अब हम सुनते हैं यह गीत।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और

हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते थे, जो 1962 में वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते।

श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल दिवस है। स्वास्थ्य यानी स्वयं की देखभाल। श्रोताओं, संतुलित आहार ग्रहण करना, अच्छी नींद लेना, साथ ही सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही स्वास्थ्य देखभाल है। दैनिक जीवन में भागदौड़ भरी जिंदगी में हम स्वयं को समय नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में अपने लिए भी समय निकालना है और अपनी खामियों को भी पहचानना है। इसके साथ ही आप किस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, इनको भी पहचानना है। अगर आप किसी तरह की बीमारी से ग्रसित होते हैं तो आप चुपचाप ना रहें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।

श्रोताओं, एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
3: डायल कीजिए 8700014242.
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242.
5: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत है. आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन. अगला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है बागी. गायक कलाकार हैं अमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज़ में सुनते हैं यह गीत.

श्रोताओं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं एनसीईआरटी

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखण्ड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहाँ का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है, तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला दुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं, जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
3: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
2: कैलपोद उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंड बट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
3: श्रोताओं, कैलपोद उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
2: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
3: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
3: दो मेंढकों की यात्रा।
5: नमस्कार साथियों, आज हम

0: आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
1: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
0: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
1: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
2: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
1: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
0: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
1: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, हैं? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
2: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
2: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
2: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
2: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
2: हाँ, ये तो है।
0: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
2: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
2: हैं? वो कैसे?
1: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
2: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
0: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी

0: हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
2: चलो।
1: संभलकर, संभलकर।
2: कहीं गिर ना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
0: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
1: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
2: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ।
1: मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
2: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
1: हाँ चलो।
0: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षणिक

0: व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
4: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
3: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
4: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
3: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के, जता के लेकर जाऊंगी।
4: ओहो बाजी आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
3: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
4: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
3: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। इस बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ, कीनू की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ। कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
4: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगी आप?
3: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
4: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
3: नमक का मोल पूछने।
5: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ, ठीक है।
3: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
5: जी, फरमाइए।
3: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
5: मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
3: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
5: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
3: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
5: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
3: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब, लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाए।
1: ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए, मेरे पास नमक है, थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी।
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
0: नहीं।
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ।
0: जी।
3: मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत।

0: वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
1: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
0: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
1: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT।

श्रोताओं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर। मैं राधा
1: और मैं पूजा,
0: हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार और जोहार। तो साथियों, समय हो चला है कार्यक्रम जोहार रांची का। शुरू करते हैं एक सुंदर विचार के साथ। कहते हैं, कदर करना सीख लीजिए, ना जिंदगी वापस आती है ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से ही ठीक हो जाती है।

0: पूजा, तो मौसम की बात कर लेते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: आज की मौसम की बात करें तो पूजा, आज 24 जुलाई को अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
1: बिल्कुल। और आज मौसम की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। बहुत से हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि रांची में कहीं झमाझम बारिश होने का आसार है। राधा जी, आषाढ़ और सावन की महीने में बारिश होना तो लाजमी है।
0: हाँ
1: बारिश की मोटी बूंदें और आंगन की खुशबू मन को तो मोह ही लेती है।
0: बिल्कुल, और ये बारिश ना हो तो जिंदगी भी नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि किसान और हम दोनों बारिश से ही जुड़े हुए हैं और पूरी जिंदगी
1: और
0: बारिश
1: वो
0: से जुड़ी
1: कहते
0: रही
1: हैं ना,
0: है,
1: जल ही तो जीवन।
0: जीवन है। बारिश में भीगने का आनंद एक जादुई एहसास है पूजा,
1: बिल्कुल।
0: जो गर्मी से राहत दिलाने के साथ साथ बचपन की यादों को ताजा कर देता है। हम अपने बच्चों को भी थोड़ी आनंद लेने के लिए छोड़ सकते हैं बारिश में, क्यों?
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: हम भी जब अपने बचपन को याद करते हैं तो बारिश का कुछ ऐसा मौसम होता है जिसे याद कर हम बहुत रोमांचित हो जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को बारिश में जरूर छोड़ना चाहिए, क्यों?
1: बिल्कुल।
0: तो बारिश की यादें दिलाते हैं और बच्चों के लिए भी एक गाना सुनाते हैं, प्यारा सा बारिश भी।
1: बिल्कुल।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर,
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पूजा, भीगने की बात तो कर रहे थे हम, लेकिन भीगने के बाद हमारी तबीयत भी तो खराब हो जाती है ना।
2: बिल्कुल वही मैं सोच रही थी कि आप बच्चों को भीगने देना के लिए छोड़ना बोल रहे थे, तो बच्चे इसका मौसम का शिकार भी तो हो जाते हैं। मौसम के बदलते बदलाव के कारण हमारे शरीर पर भी इसका असर पड़ता है। भीगने के बाद जुकाम बुखार जैसी बहुत सारी समस्याएं
1: पीड़ा से गुजरना पड़ता है हमें।
2: तो इसमें क्या क्या करना चाहिए राधा जी?
1: इसमें श्रोताओं, आप अदरक, तुलसी और लौंग वाली गर्म चाय या काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। और पूजा, बरसात के मौसम में जगह जगह पानी जमा होने के कारण कई बीमारियां फैलती हैं, है ना। इनमें मुख्य रूप से मच्छरों से होने वाली डेंगू, मलेरिया, साथ साथ दूषित पानी और भोजन से होने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड, हैजा शामिल है। इनसे बचने के लिए हमें सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। क्यों?
2: बिल्कुल।
1: ऐसे भी मच्छरदानी का उपयोग करना ही चाहिए हमें, क्योंकि मच्छरों का आना जाना
2: बिल्कुल
1: पूरे
2: लगा रहता है।
1: वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं तो रहेंगे ही चाहिए। घर हो या घर में या कूलर में पानी जमा हो तो उसे निकाल देना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। और खास बात यह है कि इन दिनों हम घर का ही भोजन खाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्या?
2: बिल्कुल।
1: और पूजा, बरसात के मौसम में हमें क्या क्या सेवन करना चाहिए? बरसात में तो हम तरह तरह के भोजन करते ही हैं, गरम पकौड़े,
2: बाहर के खानों से बचना चाहिए।
1: और गरम पकौड़े का तो मजा ही अलग है, लेकिन बरसात में हमें फल का भी उपयोग करना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: तो बरसात में क्या ले हैं पूजा?
2: विटामिन सी युक्त फल लेना चाहिए, जैसे कि जो अभी आपका सीजनल जो मिलता है, नाशपाती है, आड़ू है, पपीता, जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। और इन फलों से जैसे कि मैंने कहा कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट युक्त जिसमें
1: भरपूर मात्रा में पाया जाता है,
2: उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए।
1: हाँ, तो दोस्तों आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें और बारिश के मौसम में भीगे भी और अपने आप को बचाएं भी, और इसके बाद
2: सेहत का ख्याल रखें।
1: हाँ, सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो हम हैं, और आने वाले काम को हम अपने सेहत को ठीक रखकर ही कर सकते हैं। क्यों पूजा? तो सुनते हैं प्यारा सा नगमा।

0: तो पूजा, मौसम की बात तो हो गई है ना, तो अब इतिहास की बात करते हैं। इतिहास की ओर रुख करते हैं अगर हम, तो आज के दिन यानी कि 24 जुलाई को प्रमुख घटनाओं का चर्चा हम करते हैं।
1: दोस्तों, आज ही के दिन यानी 24 जुलाई को भारत में हर साल इस दिन को राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: हाँ, और आज के ही दिन 1932 में प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी।
1: दोस्तों, 24 जुलाई के दिन 1937 में मशहूर भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म भी हुआ था, जिन्हें हम भारत कुमार के नाम से जानते हैं। भारत के असीम प्रेम के कारण इन्हें
0: हाँ,
1: उपनाम
0: भारत,
1: भी मिला था।
0: हाँ, इन्हें उपनाम मिला था भारत, है ना। और आज के ही दिन तो क्यों ना पूजा, इनका जब नाम ले रहे हैं, देशभक्ति इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, और ज्यादातर ये फिल्म देशभक्ति पे ही बनाए हैं। और मनोज कुमार को हम याद करते हैं, है ना, और उनके लिए सुनते हैं देशभक्ति प्यार भरा नगमा, है ना, जो देशभक्ति से ओत प्रोत है।

0: पूजा, हम इतिहास की बात कर रहे थे, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो आज के ही दिन
1: मनोज कुमार का जन्म हुआ था, जिस
0: हाँ,
1: पर हम बात कर रहे थे कि
0: हाँ,
1: 24 जुलाई 1937 को उनका जन्म हुआ था।
0: हाँ, और इन्हें पता है पूजा किस नाम से जाना जाता था? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और ये बहुत ही उम्दा कलाकार थे जिन्होंने भारत के लिए हमेशा, भारत की प्रगति के लिए हमेशा सोचा था, और फिल्म भी हमेशा बनाते थे तो वो भारत पे ही बनाते थे।
1: बिल्कुल, इसीलिए तो उनका नाम भारत कुमार के नाम से भी जाना,
0: हाँ, उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और गाना सुने हम जो उनपे फिल्म आई गई है?
1: बिल्कुल।
0: तो चलो पूजा हम सुनते हैं ना।

का आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। तो इतिहास की बात कर रहे थे पूजा, हम इतिहास की बात करें, देश विदेश दोनों बात होनी चाहिए। तो विदेश की ओर हम देखें तो आज के ही दिन 1969 अमेरिका अंतरिक्ष यान अपोलो 11 के जरिए इंसान पहली बार चंद्रमा पर कदम रखकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटा था।
1: 1911 में आज के दिन अमेरिका खोजकर्ता हीराम विगम ने पेरू में स्थित
0: इंका सभ्यता के
1: प्राचीन शहर के मशहूर
0: माचू पिचू की खोज की थी। और आज के ही दिन 1830 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो इतिहास की ओर हम रुख करते ही रहेंगे और बातें करते रहेंगे। आगे बोलो पूजा, क्या हुआ था?
1: बिल्कुल, 24 जुलाई को देश और विदेश में इतिहास की कई महान प्रसिद्ध हस्तियों का निधन भी हुआ था, जिनमें बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार 1980 में जिनका निधन हुआ, और भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स चैडविक का 1974 में निधन हुआ। यशपाल भारत के मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षावाद थे,
0: शिक्षाविद थे जिनका निधन आज के ही दिन हुआ था। और पूछा बात करें तो उडपी रामचंद्र राव भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जिनका निधन 1917 में आज के ही दिन हुआ था। इनके पवित्र आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं। क्यों? और इतिहास बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, कुछ बातें हैं बनने के लिए, कुछ बातें हैं बिगड़ने के लिए, और इतिहास बनेंगे ही। तो इतिहास की बातें तो हो गई, अब रोजगार की बातें भी कर लेते हैं। पूजा, आजकल क्या हो रहा है कि युवा और युवती नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, है ना? आज की युवा पीढ़ी नौकरी ना मिलने पर बड़े मायूस नजर आते हैं, और ऐसा होना सही भी है। यदि नौकरी ना मिल रही हो तो अपने स्किल्स को हम बढ़ा सकते हैं दूसरी ओर, क्योंकि डिग्री के बजाय व्यवहारिक ज्ञान की मांग अधिक है, है ना?
1: और एक ही जगह अड़े रहने से अच्छा है कि आप अगले कदम को उठाएं और किसी अच्छे जगह में कोशिश करें।
0: क्योंकि बैठे रहने से कुछ होता नहीं है। हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि बेरोजगारी के इस दौर में अपनी योग्यता और समय का सदुपयोग करें। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे प्लेटफॉर्म्स से डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिसिस या कोडिंग जैसे इन डिमांडेड कोर्सेज कर सकते हैं। क्यों?
1: बिल्कुल, और नेटवर्किंग पढ़ाएं, आने वाले क्षेत्र में प्रोफेशनल और सीनियर से जुड़े कई बार छुपे हुए अवसर भी नेटवर्किंग के माध्यम से मिल जाते हैं।
0: नेटवर्किंग इतना बढ़ा हुआ है कि
1: हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि हिम्मत न हारे और आगे बढ़ने की कोशिश को जारी रखें। क्योंकि रोजगार ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, जरूरतें हैं, हमें उन्हें बढ़ाने की, उन्हें समझने की, क्योंकि कोशिश कभी खाली
0: नहीं जाती, एक दिन मंजिल मिल ही जाती है अगर राह सही हो तो। और हमें कभी अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। तो चलिए गाना सुन लेते हैं।

0: पूजा, रोजगार की तो बातें हो गई, क्योंकि रोजगार हमें जरूरी भी है और रोजगार हम कैसे ले सकते हैं ये हम पे डिपेंड करता है।
1: डिपेंड करता है बिल्कुल। और बातें रोजगार की हो गई, इतिहास की हो गई, तो अब कहीं घूमने फिरने भी चलते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो दोस्तों,
0: तो कहाँ घूमने का मन है तुम्हारा?
1: देखिए बारिश हो रही है तो कहीं ज्यादा दूर तो नहीं, तो अभी रथ यात्रा चल रहा है तो हमें यही आसपास ही घूमना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए। और दोस्तों अभी रथ यात्रा चल रहा है और रांची का ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर जो 1691 में नागवंशी राजा ठाकुर
0: सहदेव के,
1: हाँ बिल्कुल, और बनवाया गया था, ये धुरवा में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, 100 फीट ऊंचा मंदिर है, इसे दर्शन करने जरूर जाएं,
0: बहुत अच्छा लगता है
1: बिल्कुल।
0: और हर साल ये लगता है,
1: हर साल लगता है
0: और इसे दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि ये 9 से 10 दिनों तक चलता है, जहाँ बाहर से आकर लोग अपना स्टॉल भी लगाते हैं, जिनमें हाथ से बने कलाकृति के सामान देखने को मिलते हैं, साथ ही तुम झारखंड के मुख्य भोजन का स्वाद भी ले सकती हो। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर जगन्नाथपुर मेला का यहाँ दर्शन करते हैं,
1: इसी में अपना छोटा मोटा रोजगार भी
0: चला लेते हैं,
1: चलता है।
0: हाँ, बहुत से ऐसे चीज हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं आम जिंदगी में, वो हम मेला में देख पाते हैं। साथियों, रांची का जगन्नाथपुर मंदिर कलिंग शैली में बना है, जो पुरी के जगन्नाथपुर मंदिर का छोटा रूप प्रतीत होता है, जो हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। क्यों पूजा?
1: बिल्कुल। और पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर, जहाँ से पूरे रांची शहर का विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है।
0: हाँ, जब तक हम आपको यह प्यारा सा गाना सुनाते हैं, फटाफट घूमने की तैयारी कर लें, सच मानिए बहुत अच्छा लगेगा, गांव की आबो हवा की खुशबू महसूस कर पाएंगे आप वहां पहुंचकर, और इतना खूबसूरत माहौल होता है वहां कि बारिश भी फिर कभी धूप भी,
1: और पूजा पाठ के साथ साथ आप घूमने फिरने का लुत्फ भी उठा सकते हैं।
0: और आनंदित होकर आइए, क्योंकि हम भी घूमने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों पूजा?
1: बिल्कुल।

0: बातें हों और कला संस्कृति की ना हो तो बातें अधूरी रह जाती है। पूजा
1: बिल्कुल, तो अभी हम पर्यटन पर भी तो बात कर रहे थे, तो उसमें भी कला की बात हो रही थी, तो कला संस्कृति पे बात तो करना ही
0: करना ही चाहिए। हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे कलाकृति हैं जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व प्रसिद्ध है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक विकसित हो रहा है। जैसे मधुबनी मिथिला पेंटिंग की बात आज हम करते हैं, तो ये बिहार के मिथिला क्षेत्र की यह कला महिलाओं द्वारा प्राकृतिक रंगों और ज्यामितीय आकृतियों से बनाई जाती है।
1: बिल्कुल, जिसमें देवी देवता और प्रकृति को दर्शाया जाता है। और
0: यही नहीं, मिथिला पेंटिंग में मांगलिक अनुष्ठानों का को भी दर्शाया जाता है।
1: बिल्कुल, और मिथिला पेंटिंग
0: जिसमें शादी ब्याह होते हैं या कोई भी शुभ कार्य होता है,
1: रूपों से दर्शनीय होता है। पेंटिंग में कोबर की मछली, बांस का ये बनाया जाता है,
0: झुरमुट बनाया जाता है, और वो पेंटिंग में ही दर्शाया जाता है, वो कपड़ों पे दर्शाया जाता है,
1: फूल आदि चित्रों को के द्वारा दीवार पर या कपड़ों पर दर्शाया जाता है।
0: हाँ, हमारी भारतीय शैली को और परंपराओं को कपड़ों पर दर्शाया जाता है, जैसे साड़ी कुर्ता तरह तरह के पोशाकों पर मिथिला पेंटिंग की जाती है। भारत की यह लोक कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो रहा है पूजा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम अभी कहीं भी जाए तो देखे कि मिथिला पेंटिंग देसी नहीं विदेश में भी इसका मान बढ़ा हुआ है, और ये मतलब आयात किया जाता है ना?
1: और इससे महिलाओं को रोजगार भी तो मिल रहा है,
0: और ये बहुत महंगी पेंटिंग है। ये कपड़ों में इसका चित्रकारी देखने को मिलता
1: है।
0: और शादियों में जब दुल्हा दुल्हन का कोहबर होता है तो उसमें इतनी खूबसूरती से कलाकृति की जाती है कि देखने को बनता है। मिथिला पेंटिंग को यही नहीं, फ्रांस, जापान और स्पेन जैसे देशों के प्रमुख संग्रहालयों में भी पाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और वहाँ पे ये देखने को मिलता है पूजा। भारत की कई दिग्गज महिलाएं जैसे बउआ देवी, गोदावरी दत्ता और स्वर्गीय गंगा देवी ने विदेश में जाकर इस कला को पहचान दी है।
1: बिल्कुल,
0: और आज मिथिला पेंटिंग देश ही नहीं विदेश में भी बहुत ही
1: जाना जा रहा है
0: और इसके कपड़े और पोशाक पहने जा रहे हैं, बड़ी ही शानदार,
1: बहुत ही खूबसूरत लगता है,
0: बहुत ही खूबसूरत। हाँ, और हम चाहेंगे कि आप भी कभी मिथिला पेंटिंग का कपड़ा ले और पहने, क्योंकि मैं तो पहनी हूँ तो आप भी पहने, है ना? चलते सुनते एक प्यार भरा नगमा।

0: बातें तो अभी आपसे और भी करने का मन करता है, पर श्रोताओं घड़ी सा आपसे विदा लेने की ओर इशारा कर रही है। मुझे यानी राधा को
1: और मुझे यानी पूजा को दीजिए
0: इजाजत। कार्यक्रम जोहार रांची से। नमस्कार जोहार, जोहार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं बहुत राहते तलाश ली, चलो तुम्हें याद करके हाँ कोई गीत सुन ले। आप ये गीत सुने और राहत की सांसों के साथ पलों को याद करें जो बड़े ही हसीन थे। और इस गीत को सुनना चाहा है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत दिम्बा कौर, और इसी गीत को सुनना चाहा है बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली वल्लाह फकीर, डब्लू वल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। तो आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये प्यार भरा नगमा।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। ये अगला गीत है फिल्म सनी से, शब्द आनंद बख्शी के हैं और शब्द बद्ध किया है आरडी बर्मन ने, स्वर है लता मंगेशकर के। इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मिक्का बीरक। तो आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये प्यार भरा नगमा।

ये अगला गाना जिसे आप सुनेंगे फिल्म फिल्म पारसमणि से, रचना अरशाद भोपाली के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के हैं। इस गीत को सुनना चाहा है दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाम दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगापुर से सालिक पुजारी। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। एक संदेश के बाद फिर लौटते हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: साथियों, आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म अदालत से, रचना आनंद बख्शी के हैं, संगीत मदन मोहन के, और इसे सुरों से सजाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और इसी गीत को सुनना चाहा है दुबिहा नवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।

महिलाओं का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में साथियों आपका स्वागत है। ये महिलाओं का विशेष कार्यक्रम है। चर्चा का विषय है बच्चों का मानसिक विकास और अभिभावकों की जिम्मेवारी। सूत्रधार हैं लता रानी और राखी शर्मा। प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: बहनों नमस्कार, हृदय तल से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आज आपके साथ हैं हम दो सखियां, मैं हूँ राखी और मेरे साथ हैं आपकी हंसमुख से चुलबुले से प्यारी सी सखी जो आपसे मुखातिब होने को बेकरार हो रही हैं। आप हैं?
1: मैं हूँ लता। तो स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बारिश की बूंदे आपके घर आंगन में खुशियों की सौगात लेकर बरसे, आपके परिवार की बगिया हरी भरी, यही शुभकामना है हमारी।
0: हाँ लता, इन बूंदों के साथ हमें भी तो बहुत कुछ याद आता है ना।
1: हाँ राखी, बचपन की वो बेफिक्र मौज मस्ती, जान बुझ कर भींगना और खेत की गीली मिट्टी में उछल कूद करना।
0: क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे हम बचपन की उन गलियों में फिर से दौड़ने लगे। वो कागज की नाव, वो पेड़ों के झूले, कितनी स्वप्निल सी यादें हैं ना लता।
1: बिल्कुल,
0: आज भी जब मन उन भीगी गलियों में भटकता है तो बरबस ही चेहरे पे मुस्कान खिल उठती है।
1: तभी तो किसी शायर ने कितनी खूबसूरत बात कही है सखियों, कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट कर बचपन के जमाने नहीं आते।
0: हाँ लता, उम्र का बेहतरीन हिस्सा भी तो बचपन ही है, जहाँ हम हंसते भी हैं सहजता से और रोते भी हैं बिना इस चिंता के कि कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है।
1: वाह, क्या बात कही राखी तुमने। राखी, आती है याद बचपन की तो कुछ चेहरे भी याद आते हैं। क्यों सखियों, माँ की मीठी डांट और पिता का दुलार याद है ना?
0: हाँ सखियों, माता पिता से जुड़ी हो यादें तो जीवन पर्यंत याद रहती हैं। और कहा भी जाता है ना कि माँ बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है, और माता पिता का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर हमेशा रहता है।
1: हाँ सखियों, आजकल माता पिता अक्सर कामकाजी होते हैं, एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है, बच्चों के अपने माता पिता का साथ और समय उतना नहीं मिल पाता जितना पहले मिलता था। क्यों राखी?
0: हाँ हाँ, और बच्चे भी अपनी डिजिटल आभासी दुनिया में खोने से लग गए हैं, और ऐसे में उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है, जो हम सब देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं।
1: हाँ राखी, हताशा, निराशा, अधीरता, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उग्रता और कर्तव्य बोध की कमी बच्चों में देखी जा रही है।
0: हाँ सखियों, ऐसे में माता पिता की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जीवन के प्रारंभिक जो कुछ वर्ष होते हैं, जैसे 5 वर्षों तक, उस समय मस्तिष्क का विकास तेजी से हो रहा होता है, वह अपने आसपास के वातावरण से सीखता है।
1: ऐसे में माता पिता का व्यवहार, उनकी भाषा, उनका प्रेम, सम्मान, संस्कार बच्चे पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
0: हाँ लता, जिन बच्चों को घर में स्नेह और सुरक्षा का वातावरण मिलता है ना, वो बच्चे अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वासी, सकारात्मक और संतुलित विचारों वाले होते हैं।
1: हाँ बहनों, और जिन घरों का माहौल तनावपूर्ण होता है, माता पिता के बीच स्वस्थ और मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होते, उस घर के बच्चे भी अक्सर नकारात्मक और असुरक्षित महसूस करने वाले बन जाते हैं।
0: हाँ सखियों, हम ये समझें कि हर बच्चे की अपनी मौलिकता है, दूसरों से तुलना कभी न करें, दूसरों के सामने बच्चे को अपमानित न करें, बच्चे की अगर गलती आपने देखी भी है तो उसे अकेले में समझाएं, और कोई ऐसी सजा न दें जिससे उसके मन को ठेस पहुंचे, बल्कि सुधार करने की बातें बताएं।
1: हाँ राखी, भावनात्मक रूप से उसे मजबूत बनाए ताकि जीवन की परिस्थिति, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनके साथ सामंजस्य बनाना सीखे बच्चे, और हमें उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, और आपका सहयोगात्मक रवैया आपके बच्चों को मजबूत बनाएगा, आपके संस्कार की नींव भी बच्चों में पड़ेगी।
0: बिल्कुल, और जब संस्कार की नींव और बच्चों के लालन पालन की बात होती है, तो भाई माता पिता जब खुद खुश रहें, प्रसन्न रहें, उनकी मानसिकता स्वस्थ रहे, तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। तुम कुछ कहना चाह रही हो लता, मुझे लगता है।
1: हाँ राखी, मैं कहना चाह रही हूँ कि और जब हम शांत मन में, चिंतन में दूर तक देखेंगे ना, तो हमें एक अलग ही विश्वास की दुनिया दिखेगी,

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
5: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या

0: पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। मेरा एग्जिट
1: तो बहनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हमें लेकर चलेंगी राखी।
2: हाँ, आज हम अपने कार्यक्रम में आगे कुछ जानकारियां बहनों को दिलवाएंगे लता, जो कि बहुत ही काम आने वाली हैं। और इस संदर्भ में हम सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। आज का विषय है कम निवेश में घरेलू उद्योग कैसे स्थापित करें, और जानकारी दे रही हैं सोनाली भट्टाचार्य। और बहनों, हम आपको बता दें कि उनसे बातें कर रही हैं आपकी प्यारी सी सखी लता रानी। आइए सुनते हैं।
1: आज के समय में आत्मनिर्भर बनने और अपनी आय बढ़ाने के लिए कम निवेश में घरेलू उद्योग एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। घर बैठे ही छोटे स्तर पर कई ऐसे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं जिनमें कम पूंजी लगती है और अच्छी आमदनी की संभावना होती है। कम निवेश में घरेलू उद्योग कैसे स्थापित करें, इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए आज हमारे बीच है अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी, जो झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी सेवा दे रही है। लीगल स्टेट सेक्रेटरी ह्यूमन राइट मिशन है और 3 प्रमुख समाचार पत्रों में विधिक स्तंभकार भी है। इसके साथ ही विमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सामाजिक कल्याण एवं संरक्षण इकाई की राज्य अध्यक्ष भी हैं। सोनाली मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: जी मैम, जैसा कि आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं, और आप एक अधिवक्ता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, महिलाओं से आपका सरोकार है, तो मैम आज हम अपने कार्यक्रम में सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि घरेलू उद्योग से क्या समझते हैं हम, और कम निवेश में घरेलू उद्योग जो है उसे शुरू करने के लिए सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैम, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा जोहार। घरेलू उद्योग वह व्यवसाय होता है जिसे घर में छोटे तौर पर, छोटे स्तर पर, सीमित पूंजी और संसाधनों के साथ आप शुरू कर सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और अतिरिक्त आय प्राप्त करना। शुरुआत में पहले इन छोटी बातों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो आपको बाजार की मांग का अध्ययन करना होगा कि बाजार में किस चीज की मांग बहुत ज्यादा है, आप उस पे काम करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा उत्पाद या सेवा चुनें जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका कौशल अच्छा हो। लागत, लाभ और जोखिम, इन तीनों का आलोकन करके ही आगे बढ़े, क्योंकि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसमें हमें प्रॉफिट हो, कंसिडरेशन हो, अदरवाइज वो जो हम उद्योग करेंगे उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। व्यवसाय से संबंधित आवश्यक सबसे ज्यादा जरूरी है लाइसेंस का होना एवं पंजीकरण की जानकारी आप जरूर लें कि आप खुद को पंजीकृत कैसे करें। सभी लेन देन जो भी आप कर रहे हैं उन सब का लिखित रिकॉर्ड रखें और कर संबंधी नियमों का पालन जरूर करें। घर के समय में कम पूंजी में ये सब चीज किए जा सकते हैं।
1: ये तो बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी मैम। तो मैम, आपने पूंजी के भी बारे में बताया, तो आज के समय में कम पूंजी में कौन कौन से घरेलू उद्योग सफल हो सकते हैं मैम, कृपया बताएं।
3: आज कम निवेश में कई उद्योग सफलता पूर्वक आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग एक है, अचार बनाना, पापड़ बनाना, मसाले, बेकरी, सिलाई, बुटीक एवं फैशन डिजाइनिंग जो है, ये सारी चीजें आती हैं कम लागत में। अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, हस्तशिल्प निर्माण, ब्यूटिशियन के कोर्सेस करके आप घर में भी उसकी सेवा दे सकती हैं, एवं वेलनेस सेवाएं जो होती है जैसे मेडिटेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, ऑनलाइन बुटीक एवं ई कॉमर्स की जो सुविधाएं होती है, डिजिटल सेवाएं जिसे हम कहते हैं, कंटेंट राइटिंग, आजकल बहुत ज्यादा आप देखेंगे कंटेंट क्रिएटिंग होती है, तो उसमें आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं।

0: है, ग्राफिक डिजाइंस दे सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियोस बनाते हैं उनके पास समय नहीं एडिटिंग का, तो ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जैविक और ऑर्गेनिक उत्पाद कर सकते हैं, घरेलू सजावट की वस्तुएं बना सकते हैं, गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है छोटे उद्योगों के लिए। अच्छी आय का स्रोत तभी बनेगा जब उद्योग या प्रोडक्ट आपका अच्छा रहेगा।
1: बड़ी अच्छी जानकारी मैम, बड़े अच्छे से आपने समझाया कि किन किन उद्योगों में हम महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। मैम, अगला सवाल हम इसी से जुड़ा हुआ यह जानना चाहेंगे कि घरेलू उद्योग शुरू करने के लिए न्यूनतम कितना निवेश पर्याप्त होता है?
0: देखिए, घरेलू उद्योग के प्रकार पर निर्भर करता है कि सामान्यतः उसमें कितने खर्च हो सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे रूप में इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो 10 से 50,000 के बीच में घरेलू उद्योग की शुरुआत आप कर सकते हैं। कुछ डिजिटल सेवाएं ऐसे होते हैं जिसे उससे भी कम में निवेश किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत छोटे स्तर से करें, बहुत बड़े स्तर से कीजिएगा तो अगर अनफॉर्चुनेटली नुकसान होता है तो वो ज्यादा होगा। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है बाजार को समझना, अपने लाभ को समझना और उसको धीरे धीरे स्तर को बढ़ाना। जब आप धीरे धीरे स्तर को बढ़ाइएगा तो आपको मार्केट समझ में आएगा, आपको मोनोपोली देखना होगा कि बहुत सारी चीजों के व्यापार अगर बहुत से लोग करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जहां पे मोनोपोली होती है, कम लोग किसी उद्योग से अगर जुड़ते हैं तो उसमें मोनोपोली ज्यादा होती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा बिजनेस करें जो कि दूसरे बिजनेस से अलग हो, या तो आप में कुछ एक ऐसी बात हो जो दूसरों से अलग हो तो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कम स्तर में अगर आपको रखना है तो आप सबसे पहले कम स्तर में जो बांस प्रयोग का बिजनेस होता है वो कर सकते हैं, मोमबत्ती का बिजनेस कर सकते हैं, अगरबत्ती का बिजनेस कर सकते हैं। आजकल बहुत फीमेल्स ऐसी हैं जिनको सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है, तो वो लोग बुटीक से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, घर में ही बुटीक स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कमाना चाहें तो हम फीमेल्स के पास बहुत सारे स्किल्स हैं जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं।
1: बहुत बहुत सुंदर जवाब मैम। मैम, घर से शुरू किए जाने वाले जो आप तमाम काम आपने बताए, तो घर से शुरू किए जाने वाले उद्योगों में महिलाओं के लिए कौन कौन से बेहतर विकल्प हैं?
0: महिलाओं के लिए अनेक उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे होम बेकरी या टिफिन सेवा। बहुत सारे रांची में ऐसे विद्यार्थी हैं जो बाहर पढ़ते हैं जिनको अपने माता के खाने का याद आता होगा, तो आप एक माँ बनकर भी उन्हें पोषित कर सकते हैं, टिफिन सेवाएं उन्हें दे सकते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई जैसे कि मैंने कहा, तो बुटीक की स्थापना कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर। आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है हम फीमेल्स में कि औरत भूखी रह सकती है लेकिन मेकअप से दूर नहीं रह सकती, तो ब्यूटी पार्लर, मेकअप सेवाएं, ये सब चीजों में आगे बढ़ा जा सकता है। हस्तशिल्प एवं ज्वेलरी निर्माण, अभी ऑक्सीसाइड ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, फिर आपने देखा होगा मट्टी के जो ज्वेलरी बनते हैं वो भी काफी फीमेल्स में बहुत आकर्षण का विषय होता है, तो जो घर में फीमेल्स रहती है वो इसका भी यूज करके ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षण, जैसे कि ऑनलाइन ट्यूशन दे सकती हैं, डिजिटल मार्केटिंग एवं सोशल मीडिया प्रबंधन कर सकती हैं, मसाले, अचार, पापड़ एवं अन्य खाद्य पदार्थ का निर्माण कर सकती हैं, बहुत सारी फीमेल्स कुकिंग वीडियोस भी डाल सकती हैं जिससे कि उनका अच्छा रीच जाने पर उनको अच्छा अमाउंट भी मिलता है सोशल मीडिया के द्वारा। आज डिजिटल कॉमर्स से महिलाओं के लिए घर बैठे व्यवसाय करना पहले से कहीं अधिक आसान कर दिया है।
1: ये तो सही कहा मैम आपने, और बड़े अच्छे से आपने सिलसिलेवार तमाम जानकारी दी। मैम, हम यह जानना चाहेंगे कि घरेलू उद्योग के लिए लाइसेंस या पंजीकरण कवर कैसे करना चाहिए?
0: यदि व्यवसाय नियमित रूप से चला रहे हैं और व्यवसाय स्तर पर उत्पाद या सेवा बेची जा रही है तो आवश्यक पंजीकरण अवश्य करा लेना चाहिए आवश्यकता के अनुसार, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसे एमएसएमई कराए, खाद्य व्यवसाय के लिए आप एफएसएसआई का जो लाइसेंस होता है वो ले सकते हैं, निर्धारित सीमा से अधिक कारोबार होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, स्थानीय निकाय नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है, यदि ब्रांड बना रहे हैं तो ट्रेडमार्क का आवश्यकता जरूर होगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, वो करवाना आपके लिए लाभदायक होगा ताकि आपका जो टैक्स है वो सही तरीके से कटे, सही कानूनी पालन भविष्य में विवाद और दंड से भी बचा सकती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सरकार से कुछ नहीं छुपता, सरकार अपना टैक्स आपसे ले ही लेगी, तो मैं चाहूंगी एज ए अधिवक्ता मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगी, अगर आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं उसे लिखित तौर पर मजबूत बनाकर करें, उसे रजिस्ट्रेट करवा कर करें, अगर उससे आपको किसी भी तरह की आय हो रही है और अच्छा इनकम हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है।
1: बहुत खूबसूरत जवाब में मैम आप दे रही हैं और हम आशा करते हैं कि बहनें जो आपको सुन रही हैं उनको बहुत ज्यादा जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है।
0: बहुत धन्यवाद
1: मैम। अगला सवाल हम यह आपसे जानना चाहेंगे कि क्या परिवार के सदस्यों की भागीदारी घरेलू उद्योग की सफलता में मददगार होती है?
0: जी बिल्कुल, परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपकी बहू आपकी बेटी आपकी बहन कोई भी हो घरेलू उद्योग अगर करना चाह रही है तो सबसे ज्यादा जरूरी है उनको प्रोत्साहन देना कि आप आगे बढ़े, सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इससे कार्य का उचित विभाजन होता है, लागत में कमी आती है और विश्वास और समय निर्बंधन भी होता है, लोग जितने ज्यादा आपसे प्रभावित होंगे घरेलू सहयोग मिलेगा वो फीमेल उतनी आगे बढ़ेंगी, हम ये बात कहते भी हैं कि अगर कभी कोई औरत आगे बढ़ती है तो सिर्फ वो औरत ही आगे नहीं बढ़ती, उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है, एक समाज आगे बढ़ता है, तो कोई भी महिला जब परिवार से किसी चीज की शुरुआत करती है तो बहुत जरूरी है कि परिवार उसका साथ निभाए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके खुद के जो पति है वो उनका सपोर्ट करे, एक पति पत्नी का रिश्ता इसी पे निर्भर करता है, क्योंकि देखिए अगर कोई फीमेल आगे बढ़ रही है तो ये बहुत आवश्यक है कि उसके परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके पति का उनको मिलना, अदरवाइज आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, तो परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी उद्योग को स्थापित करने में।
1: बहुत खूबसूरत मैम। जो लोग नौकरी के साथ अतिरिक्त आय के लिए घरेलू उद्योग शुरू करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगी?
0: यदि आप व्यवसाय के साथ समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो भविष्य में विवादों से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जहां पे आप जॉब में रहते हुए व्यवसाय नहीं कर सकते, तो आप पहले इनकी जानकारी ले लें कि ऐसे कौन कौन से नौकरी होते हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसा भी सोचते हैं कि एक बार अगर मेरा घरेलू उद्योग जम गया तो मैं अपना नौकरी छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो जब तक वो जमे ना तब तक अपना नौकरी छोड़ने का रिस्क जो होता है वो कभी ना उठाए, क्योंकि का निश्चित स्रोत ऑफ इनकम अगर चला जाएगा तो दोबारा स्थापित करने में बहुत मुश्किल होगी, तो सबसे पहले आप सुनिश्चित करें कि आपके पास इतनी पूंजी हो कि अगर आप किसी सीमित समय के लिए अपना नौकरी अगर दांव पर लगाते हैं तो आपको दिक्कत ना हो आगे चलकर, कि एटलीस्ट आपको आपका रिटर्न कम से कम मिलता रहे।
1: ये तो बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी मैम, ताकि हमारी जो बहनें हैं अगर वो घरेलू उद्योग शुरू करना चाहती हैं तो तमाम चीजों को पहले अच्छी तरह से समझ लें।
0: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है
1: जी। मैम नई महिला उद्यमी बहनों के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या होगा?
0: सबसे महत्वपूर्ण संदेश मेरा यही रहेगा कि हर सफल व्यवसाय एक छोटे कदम से शुरू होती है, आत्मविश्वास रखें, अपने कौशल पर विश्वास करें, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का संकल्प करें। एक अधिवक्ता के रूप में मैं यही कहना चाहूंगी कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि अपने अधिकार अपने पहचान और सम्मान को मजबूत करने का एक माध्यम है, इसीलिए प्रत्येक महिला अपने व्यवसाय को कानूनी रूप से सुरक्षित करें, आवश्यक पंजीकरण करवाएं, लिखित अनुबंधों का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार के वित्तीय या कानूनी निर्णय से पहले उचित सलाह जरूर लें। आत्मनिर्भर महिला केवल अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को एक नई दिशा देती है। बहुत जरूरी है कि छोटे स्तर पर शुरुआत करें, नौकरी छोड़ने की जल्दबाजी ना करें, समय का सही प्रबंधन करें और रोजगार अनुबंध एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या अवश्य देखें कि कहीं अतिरिक्त व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है। आय और खर्च का सही हिसाब लगाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। आप सभी अपने जीवन में काफी आगे बढ़े, ये मेरी मनोकामना है।
1: बहुत खूबसूरत संदेश मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, आपने इतनी अहम जानकारी हमारी बहनों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: On the occasion of Fibroids Awareness Month, we are spreading awareness about heavy menstrual bleeding. Associated with uterine fibroids. So today we have Dr. Aarti Shukla from Bokaro. Doctor, how do newer oral treatments for fibroids related heavy menstrual bleeding work and which patients may benefit from them?
2: Newer drugs are available now for the medical treatment of fibroid. Previously, all other medical treatment which were available has some side effects. This newer medicine can be used in a person who has a fibroid up to 4 centimeter and who is having a lot of bleeding. This is actually a miracle drug which reduces the amount of bleeding and the size of the fibroid in these patients. This is for the persons who are willing for the issue or who are not willing for the surgical treatment.
1: Issued in public interest by Inca Life Sciences, a division of Sun Pharma.
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई,
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तो बहनों, इसी के साथ अपनी सखी राखी
7: और लता को दीजिए इजाजत।
6: नमस्कार।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, लता रानी और राखी शर्मा से। प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की।

श्रोताओं, समय हो चला है फिल्म संगीत कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं ये नगमा। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नगमा जो आपके मन को और हमारे मन को भी छूता है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से फिल्म गीत फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लौटते हैं एक संदेश के बाद।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज़्क़ को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बर्ब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said he has directed departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft late last night to him. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape.
1: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
3: The Lok Sabha has been adjourned till Monday as ruckus continued in the House for the fifth consecutive day today. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready to discuss the NEET paper leak issue from day one. He said due to certain conditions being imposed by the Congress, the discussion has not been able to proceed. Mr. Rijiju said it is the collective sentiment of all the members that there should be a meaningful discussion on the issue. The minister said in the cabinet meeting today, decisions will be taken on strict measures and the introduction of a strong law to address this paper leak issue. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, the House paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the NEET issue. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but the opposition continued with their sloganeering, demanding the resignation of the Union Education Minister. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi Police DCP Sumit Jha said these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of the apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. The Enforcement Directorate, ED, conducted searches at 8 locations today across Delhi, Uttar Pradesh and Punjab in connection with a money laundering case linked to an alleged bank fraud. ED said the investigation arises from a CBI case relating to fraud involving approximately 450 crore rupees. Further investigation is underway. BJP National President Nitin Naveen has said the government stands firmly with the citizens affected due to heavy rainfall and flood situation in Gujarat. In a social media post, the BJP President stated today that the Bharatiya Janata Party stands firmly with the affected citizens in the spirit of service and dedication and is actively providing cooperation in the relief efforts. In Jammu and Kashmir, amid the continued closure of the Jammu-Srinagar National Highway due to heavy rainfall and landslides, the Northern Railway yesterday introduced a special train between Srinagar and Sri Mata Vaishno Devi Katra to facilitate stranded passengers. The special service helped evacuate over 600 passengers affected by disruption in road connectivity. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of the World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the championship. Five-time world champion Vishwanathan Anand has taken charge of the International Chess Federation as interim president after its Russian head was placed on the latest European Union sanctions list. And with that, we end this news bulletin.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री का सख्त रुख। फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की तैयारी के बीच सांसद निशिकांत दुबे ने की दोषियों के लिए मृत्यु दंड के प्रावधान की वकालत। रांची के सूचना भवन से शुरू होगा झारखंड फिल्म संस्थान। सत्यजीत रे संस्थान के कुलपति ने लिया तैयारियों का जायजा। शुरू होगा शॉर्ट टर्म कोर्सेज। रांची के जरूरतमंद मरीज के उपचार के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रुपए स्वीकृत। सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर अब तक बांटे गए 86 लाख रुपए। श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। एआई सुरक्षा और महिलाओं के लिए विशेष कैंप तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल करेंगे तैयारियों की समीक्षा। और हजारीबाग के केरेडारी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल और दूसरा गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करनी थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: गुड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि विपक्ष के सहयोग से संसद में पेपर लीक के खिलाफ निर्भया मामले जैसा सख्त कानून बनाया जा सकता है।
2: चर्चा होने दे। पेपर लीक के मामले में भी हम कड़ी सजा का प्रावधान कर सकते हैं। उनको हम आजीवन कारावास की बात कर सकते हैं, उनके सामान को कुर्की जब्ती, उनके सारे संपत्ति को कुर्की जब्ती की बात कर सकते हैं, उनको फांसी की सजा तक का जो है हम प्रावधान कर सकते हैं।
0: झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की शुरुआत रांची के सूचना भवन से की जाएगी। इस सिलसिले में कोलकाता के सत्यजीत रे संस्थान के कुलपति समीरन दत्ता ने सूचना भवन का दौरा कर तैयारियों का जायजा।

0: लपेटा जा रहा है। इधर महिलाओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने बताया कि बुजुर्ग और अकेली महिलाओं के लिए अलग कैंप, माताओं के लिए फीडिंग सेंटर तथा महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर चिकित्सा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
1: जो महिलाएं बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट हैं, फीडिंग मदर्स हैं या कोई फिजिकली हैंडीकैप है, उनके लिए उन्हें आम लोगों के साथ ठहरने की जरूरत नहीं है। उन्हें अलग से सुविधा दी जाएगी और इसके लिए हर पारी में 3 महिलाएं रहेंगी जो उनकी मदद करेंगी।
0: रांची के जगन्नाथपुर रथ मेले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक सांस्कृतिक और जन जागरूकता का अनूठा समन्वय दिखा। कलाकारों ने पारंपरिक नागपुरी नृत्य के साथ नशा मुक्ति और जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभावी प्रस्तुतियां दी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा ने कोल्हान में संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी 1 से 16 अगस्त तक सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ पर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत कर चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।
2: बूथ कमेटी बने हुए, इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके बूथ कमेटी को सशक्त करना, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन को देने, क्योंकि जिस प्रकार 7 वर्ष में और इस सरकार से मुक्ति चाहते, तो ऐसे समय में जहां जनता हमारी प्रतीक्षा कर रही है, तो हमें अपने संगठन को सशक्त कर।
0: रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उन्हें मिल रही सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली।
3: जितने भी पेशेंट्स और अटेंडेंस है, बहुत ही यहाँ के व्यवस्था और सुविधा से काफी खुश है। यहाँ की साफ सफाई जो है बेहतर है, फिर उसके बाद डॉक्टर्स की उपलब्धता, यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है, ये सभी जो है प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर सुविधा दे, और लगातार जिला प्रशासन कोशिश कर रही है स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कि यहाँ सुविधाएं और बेहतर करे।
0: हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुकरू कोल परियोजना क्षेत्र में हुई जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर फरार अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। जमशेदपुर के डिमना डैम से बेहद दुखद खबर है। MGM अस्पताल के 2 इंटर्न डॉक्टर समीर और सक्षम की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस और गोताखोर ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाल लिए हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू समेत राज्य के 13 प्रमुख जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार मानसून की सक्रियता के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, पेपर लीक पर प्रधानमंत्री ने सख्त रुख, फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की तैयारी के बीच सांसद निशिकांत दुबे ने की दोषियों के लिए मृत्यु दंड के प्रावधान की वकालत। रांची के सूचना भवन से शुरू होगा झारखंड फिल्म संस्थान सत्यजीत रे संस्थान के कुलपति ने लिया तैयारियों का जायजा। शुरू होंगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज। रांची के जरूरतमंद मरीजों के उपचार के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रूपये स्वीकृत। सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर तक बांटे गए 86 लाख रुपए। श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में, एआई सुरक्षा और महिलाओं के लिए विशेष कैंप तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल करेंगे तैयारियों की समीक्षा। और हजारीबाग के केरडारी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल और दूसरा गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर 1:20 हो रहे हैं। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजन में आपका स्वागत है श्रोताओं। आज आप सुनेंगे गिरिजा देवी से ख्याल गायन अब होगी कानड़ा में। आइए सुनते हैं।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुगम संगीत कार्यक्रम हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए, जिसमें आप सुन सकेंगे आरजू एल्बम से लिए चंद गजलें, भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाजों में। शब्द हैं मेरी सब कोशिशें, आइए सुनते हैं।

0: संसद में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27

0: वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
2: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
3: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
4: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
5: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: ऑन द ओकेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स अवेयरनेस मंथ, वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग associated with uterine fibroids. So today we have Dr. Aarti Shukla from Bokaro. Doctor, how do newer oral treatments for fibroids related heavy menstrual bleeding work and which patients may benefit from them?
5: Newer drugs are available now for the medical treatment of fibroid. Previously, all other medical treatment which were available has some side effects. This newer medicine can be used in a person who has a fibroid up to 4 centimeter and who is having a lot of bleeding. This is actually a miracle drug which reduces the amount of bleeding and the size of the fibroid in these patients. This is for the persons who are willing for the issue or who are not willing for the surgical treatment.
4: Issued in public interest by Inca Life Sciences, a division of Sun Pharma.
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और 100 FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। फौजी भाइयों, कार्यक्रम जय भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त राधा, थोड़ी देर की हम सफर, मैं आपके साथ रहूंगी आपके लिए ये प्यारा सा शब्द क्या कहें, ये शब्द बहुत ही मार्मिक है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में चल कर देख लेना, कैसे होता है हिफाजत मुल्क की कभी सरहद पर चल कर देख लेना। ऐसे वीर निर्भीक फौजियों को हमारा तहे दिल से सलाम।

ना पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब तक जिस्म में सांस है देश की सेवा करेंगे, मिट्टी के एक एक कतरे के लिए फौजी बनकर लड़ेंगे। फौजी भाइयों, आपकी बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान के लिए कुछ भी कहना सूर्य को दिए दिखाने जैसा है। आप हैं तो हम हैं, ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन आपको जोड़ते हैं आपकी यादों से इन गानों के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। फौजी भाइयों, आपका साहस ही हमारी सुरक्षा की ढाल है। सीमाओं पर तैनात हर वो जवान जो अपने जीवन की सारी खुशियों को अपने मातृभूमि के लिए समर्पित करते हैं, हम आपके कर्तव्य निष्ठा के सदा आभारी हैं। हम ये कभी नहीं चुका पाएंगे।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। श्री मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और यह छात्रों और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की घटना के बाद से ढाई महीने में अनेक बड़े कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया और वे जेल में बंद हैं।
1: गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: नीट पेपर लीक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने की बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। इसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को वाराणसी से दीपोत्सव, कलश पूजन और समरसता संगोष्ठी के साथ होगी। इस दौरान गुरु रविदास के सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुकरू कोल परियोजना क्षेत्र में हुई जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर फरार अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डिमना झील में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दो जूनियर डॉक्टरों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पुलिसकर्मी और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोबाइल पानी में गिर जाने के बाद उसे निकालने के क्रम में यह हादसा हुआ। दोनों डॉक्टरों के शवों को झील से बाहर निकाल लिया गया है।
2: इतना स्लिपरी है ना कि यहाँ कोई खड़ा होगा तो स्लिपरी करके तू नीचे जाएगा, वो बच नहीं पाएगा। तो वो प्रेस करते करते करते करते करते नीचे गए। पहले एक मिला तो फिर हम उसको ले आए। पहले हम सोचे कि दोनों को एक साथ ले आएंगे, हम दूसरा मिल नहीं रहा, पहले उसको ले आते, फिर दोबारा 10 फीट के गैप में फिर नीचे गए जाते थे, फिर वो दूसरा भी मिला।
0: मस्कट में चल रही यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय महिला अंडर 18 टीम ने कजाकिस्तान को 10-0 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। झारखंड की संदीपा कुमारी ने हैट्रिक सहित 3 गोल किए और लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। भारतीय टीम में झारखंड की 5 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, नीलम टुपनो, श्रुति कुमारी और खिल्ली कुमारी शामिल हैं। लगातार 4 जीत के साथ भारतीय टीम अब नॉकआउट चरण और FIH यूथ हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ रही है। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल उच्च स्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे। 50 लाख श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया फुटओवर ब्रिज और सुरक्षा के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 29 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू समेत राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक है एनसीईआरटी।

0: शर्मा
1: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
0: जीवन के दुख हमें सुधरने

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की। आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुर्ग क्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं। भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम है। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
3: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
2: कैलपोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
3: श्रोताओं, कैलपोध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
2: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
3: 8800-440-5599 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
3: दो मेंढकों की यात्रा।
0: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
4: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
0: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
4: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
5: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
4: और तुम?
5: मैं
4: क्योटो जा रहा हूँ।

0: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
1: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही।
2: भाई मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। ओह, क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
2: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
2: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
2: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
2: हाँ ये तो है।
0: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
2: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
2: आई, वो कैसे?
1: अरे भाई मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
2: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहां हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
0: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
2: ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
1: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
2: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देखेंगे।
1: मैं देखूंगा।
2: और मैं ओसाका।
1: चलो
0: उछल कर को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
2: चलो
1: संभल कर, संभल कर।
2: कहीं गिरना पड़े मित्र।

0: की तरह ही दिखाई दे रहा है।
1: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
0: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
2: हाँ हाँ चलो।
3: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
1: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
1: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
1: बाजी आप

0: तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
1: नमक, लाहौरी नमक।
0: लाहौरी नमक? आप इसका क्या करेंगे?
1: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
0: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
1: है?
0: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
1: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
0: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
1: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
0: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहाँ ठीक से रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
0: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक? अरे बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
0: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो? क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
0: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानूं या ना जानूं, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ।

को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ, कीनू की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ। कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ,

0: चलिए।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
2: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
2: नमक का मोल पूछने।
3: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये जनाब आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए।

0: हाँ ठीक है,
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है।
2: अरे
1: तुम्हें से बात करती हूँ। सुनिए
0: जी, फरमाइए।
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
0: मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
0: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
0: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। पर हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाए।
1: ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा खुदा।
1: आप भी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ
3: जी, हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पिएंगी क्या आप?
0: नहीं,
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें जी। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से

0: वो वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
1: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
0: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
1: ठीक कहते हो।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। ये चंद फिल्मी नगमे प्यार मधुरता और भरपूर संगीत के साथ भरा हुआ है। आइए सुनते हैं विवाह फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रांची मेलोडीज. आइए सुनते हैं ये अगला नगमा.

जी हाँ दोस्तों, प्यार एक अजीब सा एहसास है जिसके बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। इस फिल्म का गीत था वजीर फिल्म से। आइए सुनते हैं ये अगला नगमा।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और भाजपा के कई अन्य नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। यह बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। इसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुकरू कोल परियोजना क्षेत्र में हुई जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

0: पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर फरार अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा आज राजधानी उपराजधानी दुमका में संथाल परगना प्रक्षेत्र में अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था तथा श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रही हैं। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी तथा संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई पर चर्चा हो रही है। और गढ़वा जिले के नगर उटारी भवनाथपुर मार्ग पर कल दो बाइक की टक्कर में घायल तीनों युवकों की मौत हो गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम। चर्चा का विषय है प्रकृति संरक्षण से बेहतर मुस्तकबिल।

0: हमारी मिट्टी को जहरीला होने से बचाता है। प्रकृति को बचाने के लिए हमें कोई पहाड़ नहीं उखाड़ना है, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कदम उठाने हैं।
1: याद रखिए, प्रकृति की रक्षा भविष्य की सुरक्षा। आज अगर हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो कल प्रकृति हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखेगी। तो चले राजदा, आज ही एक छोटा सा वादा खुद से करें, प्रकृति को सहेजने का वादा।
0: बिल्कुल, और ये वादा तो हम पहले भी अपने दोस्तों के साथ कर चुके हैं कि अगर कुछ ना भी सही ना, तो अपने जन्मदिन पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, खुशी के मौके पर एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो ताजी हवा को ना तरसे। और दोस्तों, अब बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अजीम शख्सियत की जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के तौर पर जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। एक ऐसा नाम जो सादगी, इल्म और बे इंतहा वतन परस्ती की मिसाल थी।
1: तो सामीन, आइए उनके जीवन के उस प्रेरणादायक सफर पर नजर डालते हैं जिसने रामेश्वरम की एक छोटी सी गली से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का रास्ता तय किया और मुल्क के मुस्तकबिल को एक नई रोशनी दी। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बेहद साधारण परिवार में अबू पाकिर जैनुल आबिदीन कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। अबुल कलाम का बचपन घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से सुबह अखबार बांटने का काम किया करते थे, लेकिन उनकी निगाहें हमेशा आसमान की बुलंदियों पर होती थीं। फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने देश के अंतरिक्ष की रक्षा अनुसंधान में अपनी अमिट छाप छोड़ी।
0: बिल्कुल, इसरो और DRDO के जरिए उन्होंने भारत को अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक में खुद मुख्तार बनाने में दिन रात एक कर दिए। और पृथ्वी जैसे मिसाइलों की कामयाबी ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि विज्ञान को आवाम की भलाई से जोड़ने वाले एक सच्चे रहनुमा थे। और शगुफ्ता, 27 जुलाई 2015 को जब वो शिलोंग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, तब दिल का दौरा पड़ने से इस महान मुजाहिदे इल्म ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस्मानी तौर पर वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनका फलसफा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। तो सामईन, हम सब ये अहद करें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने देश को एक ताकतवर और खुशहाल मुल्क बनाएंगे। याद रखिए,

0: दिल में जो ख्वाब देखता है, हर उस उस्ताद के जहन में जो किरदार साजी को तालीम का मकसद समझता है, और हर उस कौम के शऊर में जो तरक्की को अखलाक से जुदा नहीं समझती। उनकी ज़िंदगी का खुलासा शायद चंद लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है, गुरबत से आगाज़, इल्म से बुलंदी, खिदमत से वक़ार और सादगी से दवाम। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की असल मीरास है और यही उनकी सफ़र हयात का सबसे रोशन पहलू। अगर दिल में जलाने हो चरागे अज़्म व ईमान, अगर दिल में जलाने हो चरागे अज़्म व ईमान, तो याद रखो हमेशा अब्दुल कलाम का उनवान।
1: तो सामईन, अभी अभी आप सुन रहे थे मकाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन से जनता के राष्ट्रपति तक का प्रेरक सफर। मकाला निगार थी आफरीन सबा। और इसी के साथ ही दोस्तों, अब बातें करेंगे मौसम की। जी हाँ, बारिश के मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आसमान पर बादलों का घिरना, ठंडी हवा के झोंके और सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, सावन और बारिश का ये मौसम अपने साथ राहत और ठंडक लेकर आता है। गर्म उमस भरे दिनों के बाद जब पहली फुहार पड़ती है तो दिल झूम उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत मौसम अपने साथ कई तरह की मौसमी बीमारियां और संक्रमण भी लेकर आता है? क्यों शगुफ्ता?
2: हाँ नाज़रा, बिल्कुल सही कह रही हैं। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह इस बारिश के मौसम में हम अपनी और अपने अजीजों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, ताकि इस सुहाने मौसम का लुत्फ बिना किसी बीमारी के उठाया जा सके। बरसात के दिनों में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस आसानी से हमला कर देते हैं। इस मौसम में सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, टाइफाइड और पेट से जुड़े संक्रमण आम बात हो जाते हैं। इस सिलसिले में कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। राजा, आप बताएं सामीन को कि वो बातें कौन सी हैं।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, उबाल या छानकर पानी पिए। बारिश के दिनों में पानी के जरिए बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती हैं। हमेशा उबला हुआ या अच्छी तरह से फिल्टर किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करें। बासी और कटे हुए फल से परहेज करें। बाजार में कटे हुए फल या बाहर की तली भुनी चीजें खाने से गुरेज करें। नमी की वजह से इनमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। ताज़ा और गर्म खाना खाएं। हमेशा घर का बना ताज़ा और गर्म खाना खाना जरूरी है। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह धोकर और उबालकर ही इस्तेमाल करें।
2: और सिर्फ खान पान ही नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतें भी हमें बीमारियों से महफूज रख सकती हैं, जैसे कि मच्छर से बचाव। बारिश के मौसम में पानी के ठहराव की वजह से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर तेजी से पनपते हैं। अपने आसपास पानी जमा न होने दें और सोते वक्त मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें, और साथ में ही त्वचा की हिफाजत जरूर करें। सीलन और नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन और खुजली जैसी स्किन की समस्याएं आ जाती हैं। अपने पैरों और शरीर को सूखा रखें और गीले कपड़ों या जूतों को ज़्यादा देर तक पहनने से बचें। साथ ही साथ हाथ की भी सफाई करें। बाहर से आने के बाद या कुछ भी खाने से पहले सुबह अपने हाथ अच्छी तरह जरूर धोएं।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, अगर इन तमाम बातों का हम ख्याल रखेंगे तो इस मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सेहत सबसे बड़ी नेमत है। थोड़ी सी सतर्कता और एहतियात बरतकर हम इस खूबसूरत बारिश के मौसम का पूरा मजा ले सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, तंदुरुस्ती हजार नियामत है और सावधानी ही बचाव है। और साथ ही शगुफ्ता, अब वक्त हो चला है कि एक खूबसूरत सा नगमा अपने दोस्तों को सुनाए।
2: बिल्कुल, मैं इंतजार में थी कि कब आप नगमा सुनाने वाली हैं भाई, तो आइए समाप्त फरमाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

0: तो बहुत ही प्यारा सा नगमा अभी हम सुन रहे थे, और इसी के साथ ही शगुफ्ता अब हम और क्या बातें करने वाले हैं?
1: आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी बेबाक, जाबाज और असीम साहस की मूरत पर, जिन्हें हम भारत की ग्रीन ओल्ड लेडी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका की शक्ल में जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणा आसिफ अली की। एक ऐसा नाम जो महज एक शख्सियत नहीं बल्कि साहस, इनकलाब और सेक्युलरिज्म की एक रोशन मिसाल है। आइए आज हम इस सफर में उनके बचपन से लेकर इनकलाब के मैदान तक के उस पुर असर और प्रेरणादायक सफर को टटोलते हैं जिसने भारतीय इतिहास की तकदीर बदल दी।
0: जी हाँ सामईन, 16 जुलाई 1908 को कालका हरियाणा में जन्मी अरुणा जी का शुरुआती नाम अरुणा गांगुली था। एक बंगाली परिवार में पली बड़ी अरुणा जी की तालीम लाहौर और नैनीताल में हुई। उनकी शख्सियत में शुरुआत से ही बागी तेवर और न्याय के प्रति एक गहरी तड़प थी। युवावस्था में उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वतंत्रता सेनानी आसिफ अली से हुई। उम्र के फासलों और उस दौर के सामाजिक तानों बानों को दरकिनार करते हुए उन्होंने आसिफ अली साहब से निकाह किया। ये मेल सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि दो विचारधाराओं और एक साझा राष्ट्रभक्ति का बेजोड़ संगम था। आसिफ अली साहब के जरिए वो सीधे तौर पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम दिग्गजों के राब्ते में आई।
1: स्वर्णिम अध्याय लिखा गया 9 अगस्त 1942 को। तमाम बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया था। पूरा देश अनाथ सा महसूस कर रहा था। तब बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक ऐसी महिला ने मोर्चा संभाला जिसने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी। उस वक्त महज 34 साल की अरुणा आसिफ अली ने अंग्रेजी फौज की परवाह किए बिना भारतीय तिरंगा झंडा फहरा दिया। यह सिर्फ एक झंडा फहराना नहीं था बल्कि यह डूबते हुए हौसलों को एक नया आयाम देना था। इस ऐतिहासिक कदम के बाद भूमिगत हो गई। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए भारी इनाम घोषित किया, वारंट निकले, उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। लेकिन हुकूमत की आंखों में धूल झोंकते हुए वे भूमिगत रहकर आंदोलन का संचालन करती रहीं। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर उन्होंने इनकलाब की मशाल को बुझने नहीं दिया।
0: तो सामईन, अरुणा आसिफ अली जैसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मुल्क की खिदमत और सच के रास्ते पर चलना ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। आइए आज के इस दिन हम सब ये अहद करें कि हम अपने देश की गंगा जमुनी तहजीब और इसकी आज़ादी की हिफाजत पूरी शिद्दत से करेंगे। शहीदों और मुजाहिदों की कुर्बानियां ही हमारे रोशन मुस्तकबिल की जमानत है।
1: रास्ता ख्वाहिश तो हो रही है कि ऐसी शख्सियत के बारे में हम और गुफ्तगू करें, जाने हमारे अंदर भी एक ऐसी तब्दीली महसूस होती है, हिम्मत सा महसूस होता है कि काश हम उनको देख पाते, हम उनके जैसा बन पाते।
0: बिल्कुल, एक छोटी सी कोशिश की जरूरत होती है हमें शगुफ्ता, ताकि हम भी इनके नक्शे कदम पर चल पड़े और देश की हिफाजत के लिए जो हो सके वो कर।
1: इसी वादे के साथ
0: कि अगली बार हम फिर से आएंगे, फिर से किसी और मौजू पर, किसी और शख्सियत पर बहुत सारी बातचीत होगी हमारी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी दोस्त राजदा
1: और शगुफ्ता
0: को दें इजाजत। आदाब।
1: आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। शाम के 4:30 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए श्रोताओं, आज हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5 बजे और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी।

श्रमिक लोग, ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी ई श्रम पोर्टल, श्रमिकों के लिए योजनाओं तक पहुंच का द्वार, कौशल विकास, श्रमिक सशक्तिकरण की कुंजी, नारी श्रम का सम्मान, समाज का उत्थान और सड़क सुरक्षा में नागरिक भागीदारी का महत्व। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव को।

शाम 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी जैविक खेती अपनाएं। प्रश्नोत्तरी में आप सुनेंगे मिश्रित खेती लगाने के लाभ। विशेषज्ञ होंगी रिमी सिंह और भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रभु शरण।

6:32 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया। हमारी दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे चर्चा। चर्चा का विषय होगा मिशन इंद्रधनुष और नागपुरी वार्ता भी आज हम आपको सुनवाएंगे। वार्ता का विषय होगा मुंशी प्रेमचंद्र। भेंट वार्ताकार होंगे विकास सिन्हा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:11 पर जिले में आजकल।

आदिवासी अखाड़ा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 पर। आज का ये कार्यक्रम होगा हो भाषा में, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी नारी शक्ति में ही झारखंड की तरक्की, वर्षा जल संचयन और पसंद के लोकगीत भी आज हम आपको सुनवाएंगे। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे ओली मिंज। श्रोताओं, आज शुक्रवार है और आज के दिन आप सुनते हैं 7:45 से प्रायोजित कार्यक्रम सहिया।

रात 8 बजे हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संसद समीक्षा, और 8:15 पर हम लौटेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और 8:30 पर कार्यक्रम सुर्खियों में। समाचारों का समय होगा 8:45 से। पहले आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 11 बजे से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 11:10 पर हमारी आज की सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। तो ये थे कार्यक्रम विवरण, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे सरगम।
1: लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये

0: बी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
1: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
1: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
1: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं कुछ खास गाने, क्योंकि हम जानते हैं हमारे सभी श्रोता हमारे प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो चलिए करते हैं आज की इस ढलती हुई शाम को चंद खूबसूरत गीतों के नाम, क्योंकि आज है आपके साथ आपकी दोस्त रौनक जहां। सभी सुनने वालों को रौनक जहां का प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये दिलकश नगमा, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और सुरों में ढाला था नौ

चांदनी, फिल्म थी साथी। और आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। संगीतकार विजू शाह, गीतकार इंदीवर, गायक कलाकार साधना सरगम और पंकज उधास। फिल्म है मोहरा।

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे रचा था नवाब आरजू ने। फिल्म थी साथी और इस गीत में आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और साथियों की। और अब सुनिए प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, फिल्म है विश्वात्मा, आवाज साधना सरगम की, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन वीजू शाह का।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब संपन्न होता है। नमस्कार, हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अद्यतनकारी प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान श्री सोरेन ने वित्त वर्ष 2025-26 की प्रगति तथा चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण और तस्करी पर हर हाल में अंकुश लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। इसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को वाराणसी से दीपोत्सव, कलश पूजन और समरसता संगोष्ठी के साथ होगी। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के कोलसिमरी पंचायत के नंतिलो झखरा टोली में धान रोपाई के लिए सिंचाई करने को लेकर बिजली तार जोड़ने के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। और बोकारो जिले में स्थित तेनुघाट डैम के 3 रेडियल गेट और 1 अंडरसुलिस गेट खोल दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डैम में पानी रखने की क्षमता 852 फीट है, जबकि वर्तमान में डैम में 850.05 फीट पानी है। खतरे के निशान के करीब होने के कारण एहतियातन तीनों गेट खोले गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार

0: 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। प्रस्तुत है इस कार्य आज के कार्यक्रमों का विवरण। इस कार्यक्रम विवरण के साथ अब से थोड़ी देर बाद 5:05 पर होगा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम। 5:30 बजे सुनिएगा खेती गृहस्थी और 6 बजे मुख्य समाचार होंगे। हो अखरा क्षेत्रीय भाषा में यह कार्यक्रम होगा 6:02 पर। 6:30 बजे बच्चों का कार्यक्रम सुनिए नन्ही दुनिया आज अंजू रानी देवगम के साथ। 7 बजे प्रादेशिक समाचार होते हैं, उसके बाद जिले में आजकल। 7:15 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम होगा। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा होगी। 8:15 बजे रजनीगंधा। 9:45 बजे समाचार संध्या का प्रसारण होता है। 9 बजे न्यूज 8:09। 9:15 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे। 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा। 11 बजे हिंदी समाचार। 11:05 पर इंग्लिश न्यूज। और आज की सभा संपन्न होगी रात्रि 11:11 पर। तो ये था इस सभा का कार्यक्रम विवरण।

0: 5:05 हुए हैं और ये आ गया आज का गुलदस्ता कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनते हैं एक ही गीतकार के लिखे चंद गीत। आज के गीतकार हैं आनंद बख्शी, इनका लिखा ये पहला नगमा। गुलकारा हैं आशा भोसले और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।
1: Prendelo, amore mio.

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म लोफर का नगमा। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कलाकार मोहम्मद रफ़ी। और ये नगमा फिल्माया गया है धर्मेंद्र और मुमताज़ के ऊपर।

आज मौसम बड़ा बेईमान है, धूप ने छांव की जेब टटोल ली है, बादलों ने किसी पुराने खत पर बारिश की स्याही गिरा दी है।

कार्यक्रम गुलदस्ता में आज आप सुन रहे थे एक ही गीतकार आनंद बख्शी के लिखे चंद गीत। हम आकाशवाणी चाईवासा से बोल रहे हैं, 5:30 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज की चर्चा में हम बातें करेंगे मकई और मूंगफली की खेती एवं उसके प्रबंधन विषय पर। मनोरंजन करेंगे हम उड़िया लोकगीत से और कुर्माली लोकगीत से, और भेंटवार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेंगे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में जैविक खाद की भूमिका विषय पर। श्रोताओं, वर्तमान समय में या देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका होती है, और कृषि उत्पाद मानव अस्तित्व को लिए भी जरूरी है, अर्थात ये अनिवार्य आवश्यकता है भोजन, और इसमें कई प्रकार की फसलें होती है। और मक्का और मूंगफली की जहां बातें हैं, इसकी खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है। श्रोताओं, झारखंड की जलवायु मिट्टी मकई और मूंगफली की खेती के लिए बहुत ही

फायदेमंद है। इसकी खेती हम मुख्य रूप से बरसात के मौसम में जून से जुलाई के माह में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी खेती का मुख्य लाभ यदि हम देखें श्रोताओं, आय अतिरिक्त हम पा सकते हैं। ये ऐसी फसलें खासकर जो अपनी जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में स्थिर करते हैं और उत्पादकता और आमदनी में वृद्धि करते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे किसान मकई और मूंगफली की खेती किए हैं, परंतु उनका समुचित देखभाल भी जरूरी है। इसमें कई प्रकार की कीट और रोग लगने की संभावना रहती है, जैसे सफ़ेद लट, ये एक प्रकार के रोग हैं, कीट है। इसके साथ साथ उकठा रोग, अर्गट रोग, साथ ही साथ में इनका नियंत्रण भी जरूरी है। और मकई में भी जब फसलें छोटी रहती हैं उसके पत्तों को कीड़े खाते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो उसमें कीट लगते हैं, मक्का का कटुआ कीट, इनका पहचान जरूरी है। ये ऐसी कीट हैं जो दिन में मिट्टी के अंदर छुप जाती है और रात को निकल आती है, और नए पौधे जो मिट्टी से सटे हुए होते हैं इनको काटती है। इस कीट का पहचान जरूरी है, अन्यथा फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ती है, परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से हम कमजोर हो सकते हैं। इसके साथ साथ तना भेदक कीट भी होते हैं जिनका पहचान जरूरी है, और इन कीटों का नियंत्रण के लिए यदि हो तो जैविक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। परंतु यदि जैविक कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो कृषि वैज्ञानिक या इस क्षेत्र में कार्यरत विभागों के संपर्क में या उससे जानकारी लेकर हम इन कीटों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। श्रोताओं, इन कीटों और खरपतवार के साथ साथ और भी जरूरी है कि हम सिंचाई पर भी ध्यान दें। जल जमाव नहीं होना चाहिए, खास करके मूंगफली जैसी फसलों में जल जमाव से हमें बचाना चाहिए, अन्यथा हानि होने की संभावना रहती है। इन दोनों फसलों को यदि हम देखें तो मूंगफली खास करके तलनी फसलों के रूप में हम उपयोग करते हैं, इसकी काफ़ी मांग रहती है। और मकई की जहाँ तक बातें हैं, इसमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसके लिए इसकी मांग भी बढ़ती है। इन दोनों का साथ साथ खेती किया जा सकता है, या हम दो अलग अलग रूप में भी हम खेती कर सकते हैं। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं, अभी हम मनोरंजन कर रहे थे कुर्मारी लोकगीत से राम महतो एवं साथियों के स्वर में। इस लोकगीत के बाद आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेंगे मिट्टी की उर्वरा बढ़ाने में जैविक खादों की भूमिका विषय पर।
1: बहुत से पोषक तत्व मिट्टी में तथा वायुमंडल में उपस्थित तो रहते हैं, लेकिन इस रूप में पौधे उन्हें नहीं ले पाते हैं। इन पोषक तत्वों को जब पौधे ग्रहण करते हैं, तब जैविक क्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में जैविक खादों की भूमिका क्या है, इस बारे में आज हम डॉक्टर आर्यन सिंह से और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आर्यन सिंह जी, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले आप किसान भाइयों को बताएं कि मिट्टी उर्वरता का क्या मतलब है तथा इसे बढ़ाने में

0: जैविक खाद का क्या महत्व है?
1: मिट्टी उर्वरता का मतलब है खेत को उपजाऊ बनाना। खेत को उपजाऊ बनाने के लिए दो तरह से किया जाता है। एक तो जो कुछ खेत में पोषक तत्व हैं उनको पौधों के द्वारा लिए जाने के रूप में बदला जाता है।
0: अच्छा।
1: और दूसरा, यदि खेत में पोषक तत्वों की कमी है तो उसको बाहर से जो है खाद के रूप में दिया जाता है। यह खाद के रूप में रासायनिक खाद के रूप में तथा जैविक खाद के रूप में दिया जा सकता है। इस विधि में मिट्टी में उत्पन्न जीव जैसे पौधे, सूक्ष्म जीव तथा जंतु आदि के सड़ने गलने से मिट्टी को पौधों के पोषक तत्व मिलते हैं तथा ये जैविक खाद दूसरे तरह से मिट्टी को इतना जो है भुरभुरा और जो है उसमें जुताई कुड़ाई आदि करने में जो है मिट्टी को जो है काफी अच्छा बना देते हैं।
0: अच्छा, तो जैविक खादों में कौन कौन से खाद आते हैं?
1: जैविक खादों में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खली की खाद, इसके साथ साथ नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम कल्चर मुख्य है।
0: अच्छा, आपने गोबर की खाद और कंपोस्ट के बारे में बताया, तो दोनों अलग अलग खाद है? गोबर की खाद?
1: हाँ, गोबर का खाद जो है जो हमारे फार्म पर मवेशी हैं उनसे जो खाद हम बनाते हैं उसको गोबर की खाद करते हैं।
0: अच्छा।
1: और जो ये कूड़ा करकट ये सब जो है लकड़ी पत्ता ये सब से मिला करके जो खाद बनाते हैं उसको कंपोस्ट खाद करते हैं। जैसे पुआल हुआ, ये सब हुआ, इससे जो बनेगा वो कंपोस्ट खाद हुआ।
0: तो गोबर की खाद तथा कंपोस्ट खाद का मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में क्या भूमिका है?
1: गोबर की खाद में 0.5% जो है नाइट्रोजन और 0.3% जो है फास्फोरस तथा 0.4% पोटाश पाया जाता है।
0: ये आपने बताया गोबर की खाद में।
1: गोबर की खाद में कंपोस्ट में नाइट्रोजन थोड़ा कम पाया जाता है लेकिन पोटाश की मात्रा इसमें करीब 1% होती है। कंपोस्ट तथा गोबर की खाद से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है जिससे मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है।
0: अच्छा।
1: कार्बनिक खादों के सड़ने गलने से एक तरह से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो मिट्टी के कणों को आपस में बांध कर उसको रंधी तथा दानेदार बनाता है। इससे जड़ों के पौधों के जड़ों में जल तथा वायु का संचार जो है अच्छा होता है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के सतह पर एक मल्च छतरी का काम करते हैं जो है गर्मियों में ज्यादा धूप से तथा जाड़ों में सर्दी से जो है पौधों को बचाते हैं। कंपोस्ट तथा गोबर का बलुई मिट्टी के में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसके मिलने से जो है वो दानेदार हो जाता है और चिकनी मिट्टी जो है हल्की हो जाती है।
0: जी। तो किसान भाइयों को चाहिए कि कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद का ही प्रयोग ज्यादा करें ना?
1: हाँ, रासायनिक खाद के साथ साथ इस खाद का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे मिट्टी का जो है मिट्टी सुधर जाती है।
0: और कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में और क्या क्या फायदे होते हैं?
1: कार्बनिक पदार्थ जो हमारे मिट्टी में जीव जो पौधों के मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए जो जीव हैं जैसे केचुआ है, चींटी है, रोडेंट है, ये सब कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ खाने के बाद जो है ये मिट्टी को निकालते हैं कि जैसे केचुआ है मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है तो उसको भुरभुरा कर देता है और इससे जो है मिट्टी में जो है वायु का संचार होता है और मिट्टी हल्की हो जाती है। इससे पौधे जो है अच्छा अपना खुराक ले पाते हैं
0: और अच्छा वृद्धि भी हो पाता है
1: पौधे। जी हाँ।
0: तो आप किसान भाइयों को पहले बता दें कि कंपोस्ट बनाने की वैज्ञानिक विधि क्या है?
1: वैसे तो हमारे किसान भाई ऐसे ही जो है गड्ढा खोद करके और उसके ऊपर जो है अपना गोबर और कंपोस्ट सब जो है डालते रहते हैं लेकिन इस विधि में ऐसा होता है कि जो है नाइट्रोजन का जो है काफी नुकसान होता है। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि नाइट्रोजन जो है नुकसान न हो और पूरा का पूरा कंपोस्ट का नाइट्रोजन खेत तक पहुंचे। इसके लिए 3 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर गड्ढा खोदना चाहिए।
0: आपने बताया 3 मीटर लंबा,
1: 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, अरे 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। इस तरह का गड्ढा जितने मवेशी हो उतने गड्ढे होने चाहिए।
0: अच्छा।
1: यदि किसान के पास 4 मवेशी हो तो 4 गड्ढे होने चाहिए।
0: अलग अलग होने चाहिए?
1: नहीं, अलग अलग का सवाल नहीं, इतने गड्ढे का आवश्यकता होगा, इतना गोबर पैदा होगा।
0: अच्छा।
1: तो इसको जो है 4 मवेशी तो 4 गड्ढे की जरूरत पड़ेगी।
0: तो ये जो नाप आपने बताया ये सही होना चाहिए ताकि हाँ, खाद अच्छी तरह तैयार हो।
1: हाँ, इसमें सड़ने गलने में उसी के हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से जो है ऐसा लंबाई चौड़ाई लिया गया है और प्रत्येक गड्ढे को 3 बराबर भागों में बांटे। कूड़े कचड़े पुआल पौधों की पत्तियां जलकुंभी आदि 15 सेंटीमीटर बिछावे, उसके ऊपर गोबर का 5% का घोल डालें। उस यदि घर में राख आदि हो तो 200 ग्राम जो है लकड़ी का राख जो है उसके ऊपर डालें। प्रत्येक सतह पर जो 3 सतह बनाए हैं उसमें 25 ग्राम जो है यूरिया डालें। गड्ढे को इस प्रकार तब तक भरते रहें जब तक कि वह जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊंचा न भर जाए।
0: अच्छा।
1: उसके ऊपर जो है 5 सेंटीमीटर मोटा मिट्टी से ढक दें और इस तरह से ढकने के बाद 5-6 महीने छोड़ दें, कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगा।
0: अच्छा, पहले तो गड्ढा करना है और उसके बाद उसमें
1: ये कूड़ा कचरा
0: पुआल पौधों की पत्तियां आदि डालकर,
1: उसके बाद गोबर का जो है 5% का घोल आदि डाल करके और उसमें थोड़ा सा यूरिया
0: डालना है,
1: थोड़ा सा यूरिया भी डाल देना चाहिए
0: और उसके बाद अंत में 30 सेंटीमीटर जब ऊपर
1: ऊपर तक भरना चाहिए।
0: हाँ, तो उसमें
1: मिट्टी से ढक देने से नाइट्रोजन का जो है नुकसान नहीं होता है,
0: इसलिए भरते हैं।
1: हाँ, इसलिए मिट्टी से ढक देते हैं
0: और इसे 5-6 महीने तक रख देते हैं। अच्छा, तो ये तैयार हो जाता
1: है, 6 महीने में सड़ करके तैयार हो जाता है।
0: अच्छा सुनिए, आजकल बाजार में कंपोस्ट खाद 1-2 किलो का पैकेट मिलता है, तो इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व काफी मात्रा में मिलते हैं और इसको किसान भाई बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे?
1: इसको इनरिच कंपोस्ट कहते हैं। इसको बनाने के लिए पहले बताए गए के अनुसार ही जो है गड्ढा खोदकर पूरे गड्ढे को एक बार में भरते हैं।
0: अच्छा।
1: नमी अच्छा बनाए रखने के लिए इसमें जो है प्रति टन जो है पानी, इसमें नमी बनाए रखने के लिए पानी जो है देते रहते हैं।
0: अच्छा।
1: इसके साथ साथ प्रति टन जो है 5.5 किलो यूरिया, 5% मसूरी रॉक फॉस्फेट
0: मिलाते हैं, मसूरी रॉक फॉस्फेट।
1: हाँ, मसूरी रॉक फॉस्फेट जो है इसमें मिलाते हैं और 15 दिन के बाद जो है इसमें फबूदी पेनिसिलियम एस्परजिलस 500 ग्राम प्रतिशत जैविक पदार्थ के, मतलब जितना खाद हो उसके अनुसार से 500 ग्राम 100 में 500 ग्राम जो है डालना चाहिए।
0: अच्छा।
1: इसकी पलटाई जो है 15-30-45 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। ये खाद जो है 3-4 महीने में बनकर तैयार हो जाता है।
0: अच्छा। तो कुछ किसान भाई खली को भी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, इससे क्या लाभ है?
1: खली में भी जो है पोषक तत्व तो काफी मात्रा में पाया जाता है। खली में जैसे अंडी की खली हुई, नीम की खली हुई, करंजी की खली हुई, सरसों की खली हुई, तो एक तो इसमें पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, दूसरे जो है ये नीम ये खली जो है रोग निरोधक कीड़ा निरोधक ये भी काम जो है करता है। इसमें जैसे खली में 4-8% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, 1% से 2% स्फुर तथा 1.3 से 1.9% जो है ये पोटाश पाया जाता है
0: जी।
1: तो इसमें जो है ये रोग निरोधक क्षमता जो है काफी काम करता है। इसको किसान भाई सब्जी आदि के रूप में जो है, क्योंकि महंगा है इसलिए सब्जी आदि को उगाने में इसको जो है डालते हैं,
0: ये खली को।
1: जी हाँ।
0: सिंह जी, शुरू में आपने हरी खाद के बारे में बताया था, तो हरी खाद किस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है?
1: हरी खाद में क्योंकि ये पौधे से बनाया जाता है।
0: अच्छा।
1: तो पौधे में जो भी पोषक तत्व तो होते हैं वो जो है सड़ने के बाद जो है मिट्टी में मिलते हैं और जो है एक अच्छा खाद जो है बन जाता है
0: जी।
1: इसमें ऐसा करते हैं कि जो दो दाल वाला जो है सनई ढैंचा मूंग उड़द ये सब है इनको जो है खेत में उगाते हैं। खेत में उगाने के बाद जो है इसको जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, फूल आने के समय हो जाता है
0: जी।
1: तो उसको जो है मिट्टी से, मिट्टी पलटने वाले हल से जो है मिट्टी में पलट देते हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसमें ऐसा होता है कि ये चूंकि दो दाल वाला फसल है तो इसकी जड़ें थोड़ी नीचे जाती हैं, तो नीचे से पोषक तत्व तो खींच करके ये जो है जब पलटते हैं खेत में तो ऊपरी सतह पर आ जाता है और इस तरह से जो है पौधों को जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाती है।
0: हरी खाद में कौन कौन से फसलों को उगाया
1: जाता है? हरी खाद में सनई ढैंचा ग्वार लोबिया मूंग उड़द ये दो दाल वाले फसलों का जो है उपयोग करते हैं।
0: तो सिंह जी, इन फसलों को मिट्टी में मिलाने का मुख्य समय क्या है तथा इसको मिट्टी में मिलाने के कितने दिन बाद मुख्य फसल को बोना चाहिए?
1: इसको मिट्टी में मिलाने का जो समय है वो जब इसमें फूल आना शुरू हो उस समय जो है इसको मिलाना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि चूंकि ये दो दाल वाली फसल है तो इनकी जड़ों में एक तरह का गांठ बनता है जो कि वायुमंडल से, वातावरण से जो है नाइट्रोजन को ले करके वो अपने जड़ों में जो है इकट्ठा करता है। तो ये समय जो है उन गांठ बनने का जो है सबसे अंतिम समय और अच्छा समय होता है। उसके बाद जो है पौधा जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने लगता है।
0: अच्छा।
1: और चूंकि इस समय पौधा जो है काफ़ी मुलायम होता है इसलिए मिट्टी पलटने वाले हल से पलट देने पर वो मिट्टी में मिल करके सड़ने में जो है जल्दी होती है, जल्दी सड़ जाता है और इसके 15-20 दिन के बाद जो है धान की रुपाई आराम से किया जा सकता है।
0: तो राइजोबियम भी तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है?
1: हाँ, राइजोबियम भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ये भी एक जो है दलहनी फसलों की जड़ों में इसके जो है जो जीवाणु होते हैं वो छोटे छोटे गांठ बनाते हैं और हवा से नाइट्रोजन जो है, हवा का नाइट्रोजन तो पौधे ले नहीं पाते हैं, तो ये जो है पौधा जो पौधों की जड़ों में ये जो राइजोबियम के जो जीव हैं
0: हाँ।
1: वो उनको जो है नाइट्रेट एक ऐसा रूप होता है जो कि नाइट्रोजन को उस रूप में बदल देते हैं और वो पौधों को जो है मिलता है,
0: खाद मिल जाता है।
1: जी हाँ।
0: तो इससे क्या क्या लाभ है?
1: इस विधि के द्वारा 20 से 110 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर जो है खेत को मिलता है, जो 200 से 250 किलोग्राम यूरिया के बराबर होता है। इससे दलहनी फसलों में 15-20% की उपज की जो है वृद्धि हो जाती है। और यही नहीं, यदि इधर दलहनी फसलों के बाद दूसरा तीसरा फसल में भी नाइट्रोजन की जो है मात्रा खेत में बढ़ जाती है।
0: तो इस खाद को देने का तरीका क्या है?
1: इस खाद को देने के लिए बीज बोने के पहले 100 ग्राम गुड़ लेते हैं और गुड़ को जो है 1 लीटर पानी में 15 मिनट तक उबालते हैं, उसके बाद उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें जो है एक पैकेट जो है राइजोबियम कल्चर डाल करके उसको अच्छी तरह से घोल लेते हैं और एक हेक्टेयर खेत में जो बीज बोना है उसमें इसको जो है मिला करके अच्छी तरह से और पेपर ओपर पर बीज को जो है छाए में सुखा लेते हैं और उसके बाद जो है बीज का खेत में प्रयोग करते हैं।
0: तो इसमें सावधानी भी बरतनी होती होगी?
1: हाँ, इसमें ऐसा है कि ये धूप, सूर्य के धूप से और गर्मी से कल्चर के जो जीव हैं वो जो है मर जाते हैं, इसलिए इससे इसको जो है बचाना चाहिए। और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए खेत में फास्फेट का जो है पूरा प्रयोग करना चाहिए।
0: जी, तो नील हरित शैवाल का मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी?
1: जी हाँ, नील हरित शैवाल वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तथा इसे धान की फसल को उपलब्ध कराते हैं। इसके द्वारा प्रति हेक्टेयर 65 किलोग्राम यूरिया के बराबर जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है।
0: तो डॉक्टर आर.एन. सिंह जी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में जैविक खादों की भूमिका के बारे में आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको।
2: श्रोताओं, अभी हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी ले रहे थे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में जैविक खाद की भूमिका, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आर.एन. सिंह और उनसे बातें कर रही थी सीमा श्रीवास्तव। इस भेंटवार्ता के बाद आई कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये संदेश।
3: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800,000 सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुन्द्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं

0: पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

0: के समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान श्री सोरेन ने वित्त वर्ष 2025-26 की प्रगति और चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में अवैध शराब निर्माण, भंडारण और तस्करी पर हर हाल में अंकुश लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उत्पाद और मद्य निषेध विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने का भी निर्देश दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त कर उनके द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने जांच प्रभावित करने की आशंका जताते हुए जमाल अहमद को जल्द पदमुक्त करने की भी मांग की। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में रामगढ़ जिले को राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह पुरस्कार डॉ. विश्वनाथ राव और गोला की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपराजित ने प्राप्त किया। जिले के उपायुक्त ऋतु राज ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण देखभाल सरकारी योजनाओं से उनको लाभान्वित करने और जननी सुरक्षा योजना से उन्हें आच्छादित करने के परिणाम स्वरूप यह पुरस्कार मिला है। और गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

निया आकाशवाणी रिया चैबासा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज श्रवण अही में तना ना आयु पिंग छः बजे ना ते दो मिनट हो बस गायना कार्यक्रम हो अकड़ा आयु मिचबेन लगिन अलिंग बिटाओ जो कि महेंद्र गुहिया सभी को अलिंग पे ते जोहार जाओ दिन लिखे एसपुरेलिंग सगम अगुतरे इना को मियन मियन तिलिंग आयु मिचबेना आयुम लगिन एफएम रेडियो जपारे तयन बन छेमर ना तरंग बन जपाओ जो इन रद एला आयु मिचे बिन अलिंग सभी को ते आयर अटकर जगर जगर तिया विषय तो मिना अटकर जगर रे गमा समय रे जो नमादा रे उड़न रे अब स्वास्थ्य रे कुछ प्रभाव को पड़ावा इना में ते अतेन नमा गमादा रे गमा समय हमारे जो स्वास्थ्य तो हुआ इना में ते अतेन रे कावड़न ते या दुर्करा उन्होंने ते अब बचाउन ते हो बना चिने में ते ची ना लिया बो नमा दारे अब ना बुरु दारु करे जो इस पूरे इनकन जो को तई ने ओकना इतके कुर्सी इमन इमना को इना को अब हमारे यदि टोयना इन रो फुसुरी पुंसी लिखना को बाबाता ओना इनाते ओंडो मियन मिना जे अब नमादा रे बो उड़न रो अब मियन मेट रिया ओकना काना बो मिता जे बंगला लिखा बो मिने कोना बो जिंगा हुआ इन लेकन हासु को ना नमा ओंडो नन रे अब पूरे सिपिर सिपिर गमरे बो तयुआ एनरियो अब बो हसु को होबाना बो हसु मेन मेन तेगे एनरे मलेरिया लिखना को मलेरिया लिखना को पूरे दिन रिकेयन रदो को मंदा को एना तेगे ओंडो ब्रेन मलेरिया टाइपाइड चिकन चिकना को इनका तिरसन इडिन इना मेनते आते इना को एतरियो बचाउनते या ओंडो अब बचाउनते या मेन रदो ना बरसिंग बो कोरे प्लास्टिक को या तो अब ओकोना बरसाती बो मनिया प्लास्टिक रे सुतुई को ना बिटाव दुकान करे इन लेकना करियो तो सिंह के नोते दरकारा पूरे होमो सासायन रेयो अबुए हसु को ना नमा अंते समय ललके ते पाइटी अबो पाइटी के अंड चुटी अबो चुटिन के इन लेका रिके रे दो अबु होमो अंड स्वस्थ रे का करबवा अंड बुगिल का तैन अबु स्वस्थ क्राबियाना चे हसुद को होबायाना एन रो ओकोना जीवन रो उड़ उतरे एन उड़ को पाइटी को कबू पूरे दिए निया गे तिसिंगे जगार चे अटकर जगार दो जानकारी रिया जगार लिंग जगार पे ना बेन अयम तई के ना अटकर जगार एन चनम एला आयरपा हेरो परोप रिया दुरंग लिंग अयम चे बिना

0: Noben ayum ten tekina hero prob ria duran. Saritege hero prob na do paitiko espure chalau kana jabu laga kana ro nelka turang manoranjan ji duran ko bayum beke rado juka gali rio abu homoren laga ko nire. Enda do mar laga do laga gya paitio esu dorkara paiti kabo paiti do jamnu do kabo namia. Ina mente ate पाइटितिया ऐसो दरकार एन साथ साथ रे मनोरंजन ची सुसुन दुरंग को आयु में तिया दरकार गे निन चनम एललिंग आयु में ची बिना तिसिंग बेप्टा जगर रे एं को अड़के ते अबु चिलकन लाभ ची लपकोबु नमिया एन रे
1: तिसिंग अलिंग बिल्ला तो पहलिंग हो जुए कने अकिनो जपगर ते अंड अकिने उपरुम ची परिचय को दाखिन के जगह रब तिशिंग जगरतिया विषय दो मैं

जय हिंद बच्चों। आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजु दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों आज हम इतिहास सीखते हैं, है ना? हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे इतिहास, ठीक है? आज हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जिन्हें हम लोक

लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ उनकी लाल बाल पाल की टिकड़ी गरम दल के रूप में जानी जाती थी। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना बच्चों। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक शिक्षक और संस्कृत विद्वान थे। 1876 में उन्होंने गणित और संस्कृत में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1889 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के आलोचक तिलक ने भारतीयों में राष्ट्रवाद जगाने, शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी जयंती को सार्वजनिक त्योहारों के रूप में मनाना शुरू किया। बच्चों, तिलक ने लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए 2 समाचार पत्र लिखे, केसरी जो मराठी में था और मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था। ब्रिटिश सरकार उनके राष्ट्रवादी विचारधारा और क्रांतिकारी लेखों से इतनी भयभीत थी कि उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया। क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1908 में राष्ट्रद्रोह के आरोप में उन्हें म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया गया और उन्होंने प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक गीता रहस्य की रचना की थी। बच्चों, जेल से लौटने के बाद 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और पूरे देश में स्वशासन का प्रचार किया। भारतीय राजनीति के इस दिग्गज नेता का 1 अगस्त 1920 को निधन हो गया। उनके निधन पर महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि दी थी। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? आज 24 जुलाई है तो 23 जुलाई को यानी कि कल की तिथि थी बाल गंगाधर तिलक के जन्म तिथि। इसलिए आज हमने क्या सीखा? बाल गंगाधर तिलक के बारे में। उनका आपको नारा, प्रसिद्ध नारा याद हो गया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हमने सीखा आज बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आगे और हम कई बातें सीखेंगे, गाना सुनेंगे, है ना, मनोरंजन करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: नई राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गी हम बोले रुड़ तब में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव गड़गड़ा।

ஆனைக்கு தானா जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नंबर सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा

0: Dan sing tamsoe wanita tamsoe berupa sena kena esu dukuran nanya wapa meriwa tapa meriwa wa ditanika
1: anya pun do bumbai kurang patan pun do kurang anya hon do kodomini kurang ro patan patan pun kita mai kurang minimal buruli na bagi atut kini muna asih arti kalau polis kalau ini lari celau tanu buruan gue yang tahu jaya tere kakak gue ho ini buku kau kakak melmi ya
2: suruh kita apil lekan aling si aja hurar emina hero jika hurar emina hero to bugin hurat eh sesen ka eh uang eh bita huran ka ali ayah nutun kini nami apil lekan.
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
4: हमने सुना कुछ जरूरी संदेश, चलिए हम सीखेंगे, हम जानेंगे, जानकारी लेंगे मिशन वात्सल्य के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है, इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहाँ बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती है। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचनार्थ जारी। आइए बच्चों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते एक प्यारा सा गीत।

0: सम्राट अशोक।
1: मैं शुभांकर गोप, संवाददाता।
2: मैं जयंत गोप, द्वारपाल।
3: मैं अश्रिता कुंकाल, राजकुमारी पद्मा।
4: चलिए, आप सबका स्वागत है आज के ड्रामा में अशोक का शस्त्र त्याग। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका पहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उसके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं।

0: आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हो चुके हैं, पर हम आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम?
1: राजन, संवाददाता आना चाहता है।
0: आने दो।
2: महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं।
0: मारे गए हैं? तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो?
2: बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज ही बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है।
0: कलिंग के फाटक आज भी बंद है?
2: हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है।
0: बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना की वापस चले जाएगी।

दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं।

0: मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसके दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे।
1: मगध की जय, सम्राट अशोक की जय।
2: सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना की कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं।

0: सुनो, तुम वीर कन्या, वीर बागनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उससे तुम्हें लोहा लेना है।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले
2: ना। पिछले महीने तो ली

0: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
0: जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
0: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
1: बन गया बजट?
0: हाँ, 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
0: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
0: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
0: जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: बच्चों, आज रथ मेला है। मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मौसी के घर जाने, भक्तों को दर्शन देने और धार्मिक आस्था का जश्न मनाने के लिए मनाई जाती है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की होती है। बच्चों, मान्यता है बच्चों कि तीनों देवता हर साल 9 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। भगवान मंदिर से बाहर आकर नगर भ्रमण करते हैं ताकि जो भक्त मंदिर नहीं जा सकते वे भी सड़क पर उनके दर्शन कर सकें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के रथ पर सवार देखता है उन्हें पुण्य और मोक्ष मिलता है। यह यात्रा सिखाती है बच्चों कि भगवान सबके लिए एक है और वे केवल मंदिर में नहीं बल्कि आपके अपने भक्तों के बीच भी रहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा नन्ही दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से, और उसके बाद जिले में आजकल। कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

0: तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा। रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति, राजस्व में वृद्धि और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने का निर्देश। राज्य के महाधिवक्ता रोहिताश रॉय ने विधि पोर्टल 2.0 का किया शुभारंभ। सरकारी मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन को मिलेगी नई रफ्तार। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर राज्य सरकार का विशेष जोर। उच्च स्तरीय बैठक में 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दुमका में श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। कहा श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। और रांची में डोरंड कप की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मुख्यमंत्री 26 जुलाई को करेंगे रांची लीग चरण का उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कुल 33 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। इन पार्कों का चयन राज्यों के प्रदर्शन और पहल के आधार पर चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे की कई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
5: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में 2 बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उत्पाद विभाग में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति पूरी करने का निर्देश दिया। श्री सोरेन ने राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर ठोस योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। राज्य सरकार ने सरकारी न्यायालय प्रकरणों के समग्र और प्रभावी डिजिटल प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज विधि पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया। महाधिवक्ता रोहित आशय रॉय ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पोर्टल राज्य में मुकदमों के बेहतर प्रबंधन और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पोर्टल आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, दक्ष और जवाबदेह बनाने में मदद करेगा। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय लिया है। इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट और पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज रांची में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में एम्बुलेंस खरीद, संचालन और निविदा प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर श्री सिंह ने अधिकारियों को नई एम्बुलेंस की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया 1 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि इन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया जा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त कर उनके द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने जांच प्रभावित होने की आशंका जताते हुए जमाल अहमद को जल्द पदमुक्त करने की भी मांग की। बोकारो ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले के मुख्य आरोपी कौशल कुमार पांडे की जमानत याचिका पर सीआईडी की विशेष अदालत में आज सुनवाई पूरी हो गई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और 27 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगा। यह मामला बोकारो ट्रेजरी से 11 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज उपराजधानी दुमका में संताल परगना प्रक्षेत्र में अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था तथा श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि श्रावणी मेले को देखते हुए देवघर और दुमका में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
6: 2 महीना तक मेला चलेगी और इसमें काफी भीड़ होगी, तो अपराध नियंत्रण की भी आवश्यकता है। सो जो भी आवश्यकता है दोनों साधन का और बल का, वो सब भी हम लोग देख रहे हैं। श्रद्धालुओं को तो बिल्कुल नजर रखी जाएगी ताकि हम लोगों का कोई घटना ना घट पाए।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में रामगढ़ जिले को राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जिले को यह सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है।
7: सुरक्षित मातृत्व अभियान में जिला को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड से सराहा गया है। इसमें विभिन्न इंडिकेटर होते हैं जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके गर्भवती होने से लेकर के डिलीवरी होने तक

0: उनके ANC होना, उनका टीकाकरण होना, इन पूरी प्रक्रियाओं में हम लोगों ने टाइम टाइम पे अलग अलग इंडिकेटर्स में फोकस किया है। इसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी इस पे कार्य हुए हैं।
1: गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज सिद्धो कानो कृषि और वनोपज जिला सहकारी संघ की वार्षिक बैठक हुई। बैठक में जिला वन पदाधिकारी मनीष दुबे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को अधिक से अधिक वनोपज का लाभ मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
2: तो ये वार्षिक अधिवेशन है जहाँ पे हम लोग पिछले साल जो भी चीजें हम लोगों ने किया है, यहाँ पे जो हमारे क्षेत्रधारी हैं, स्टेकहोल्डर्स हैं, उनके समक्ष हम ये बातें को रखते हैं। आगे आने वाले समय में जो पिछले आयु वाला जो साल है, हम लोग किन किन मुख्य बातों पे ध्यान रखेंगे, बहुत से सुझाव इसमें आए, उन पे भी हम लोगों ने नोट किया है।
1: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहली बार आयोजित डोरंड कप को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्टेडियम में रंग रोगन और दर्शकों के बैठने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर रांची के SDM कुमार रजत और यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने आज स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन की ओर से हर एंट्री और एग्जिट गेट पर पुलिस जवान मुस्तैद रहेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डोरंड कप के रांची संस्करण का उद्घाटन 26 जुलाई को करेंगे। मौसम। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 30 जुलाई तक गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि आज राज्य के दक्षिण, पूर्वी, उत्तरी, मध्य और निकटवर्ती पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा। रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति, राजस्व में वृद्धि और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने का निर्देश। राज्य के महाधिवक्ता रोहित आशीर रॉय ने विधि पोर्टल 2.0 का किया शुभारंभ। सरकारी मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन को मिलेगी नई रफ्तार। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर राज्य सरकार का विशेष जोर। उच्च स्तरीय बैठक में 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दुमका में श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। और रांची में डोरंड कप की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मुख्यमंत्री 26 जुलाई को करेंगे रांची लीग संस्करण का उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: चतरा के प्रगतिशील किसान वीरेंद्र दांगी ने अपनी मेहनत और वैज्ञानिक सोच से ICR द्वारा अनुशंसित धान की किस्म CR320 का प्रयोग कर खुद के साथ सैकड़ों किसानों की भी किस्मत बदलने का काम किया है। बीज निर्यातक किसान के तौर पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुके किसान वीरेंद्र ने बताया कि
2: जब से कृषि विभाग के पदाधिकारियों से जुड़ा हूँ, तब से प्रेरित किया गया कि आप अपने मिट्टी में बीज उत्पादन करें। ICR चावल अनुसंधान केंद्र का ये CR320 है, जो उत्तम किस्म के बीज है, और उसी बीज को ज़्यादा प्रचार प्रसार मैंने किया है। अपने जिला में 100 किसान को कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पिछले साल बंटवाया था। इसी के उपलक्ष्य में विस्तार कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे मतलब ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा से संबंधित जिलों के लिए जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI में चतरा जिले ने सुधार करते हुए विशेष प्रयास की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सूचकांक में चतरा जिले को 256वां रैंक प्राप्त हुआ है। इधर एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में जनप्रतिनिधियों की नहीं बल्कि अधिकारियों की सरकार चल रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि
3: पार्टी के संदर्भ में और पार्टी के जो मेरा बेसिक दायित्व है कि BLM जो पार्टी का बनना चाहिए स्टेट पार्टी के रूप में राष्ट्रीय पार्टी को प्राप्त है और रीजनल के रूप में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय को प्राप्त है। तो मेरा ये कर्तव्य है कि एकदम बूथ लेवल पर हम अपना एजेंट तैयार करें, अपना प्रतिनिधि तैयार करें।
1: 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 1970 और 80 के दशक तक चतरा जिला अपने घने जंगलों और बाघों की मौजूदगी को लेकर भी चर्चित रहा है। चतरा के जंगल सीधे तौर पर पलामू टाइगर रिजर्व के बफर जोन और कॉरिडोर के तौर पे जुड़े हुए हैं। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के जिला पदाधिकारी मुकेश कुमार ने इस पर बातचीत के दौरान कहा कि
4: ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का जो 6th साइकिल है उसका रिजल्ट जो 2026 में पब्लिश किया जाना था, इसके लिए झारखंड के सभी जिलों में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अंतर्गत जो सर्वेक्षण का काम चल रहा था, इसमें चतरा में भी काम चल रहा है। जो उसके अंदर फेज वन का सर्वे था वो कंप्लीट करा लिया गया था, लेकिन कुछ सबमिट्स में पुनः सर्वे करवाने का जो हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें काम अभी चल रहा है। कुछ जो स्पॉट्स है वहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगाए जाने हैं फिर से। चतरा का जंगल जो है झारखंड में टाइगर्स के कॉरिडोर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पलामू टाइगर रिजर्व से जो कॉरिडोर हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ती है वो चतरा से होकर ही जाता है, इसलिए यहाँ के जंगल इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने लोकसभा में केंद्र सरकार से जिले के कोयला उत्पादन क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अलग समर्पित कोल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना सर्वोपरि है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
0: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: आकाशवाणी का
1: ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: ये आकाशवाणी चाईबासा है, पेशे खिदमत है आपकी पसंद कार्यक्रम। इसमें यह है पहला नगमा फिल्म आंधी से। आवाजें हैं सुचित्रा सेन, संजीव कुमार, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
3: रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
3: तुम नहीं बदलोगी। लो।
2: इस नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, कुलवंती गुप्ता, अभिषेक और अक्षत प्रसाद। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और अदीबा। चांडिल से तुलसीदास महतो।

0: सुनाती। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे,
1: क्यों कर रहे हो?

सफ़र। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का नगमा किशोर साहब की आवाज़ में। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ग्राम अमजोरा पुखरिया मालुका से शिवा गोप, शिवांश गोप, प्रेम, कपिल, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। न्यू कॉलोनी टुंगरी से सुशील कुमार सिंह, श्रीमती संध्या देवी, प्रियंका, काजल, कृष और किट्टू।

आशा, यह इस फिल्म का गीत। गुलकारा हैं लता मंगेशकर। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रायगढ़ से शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान, भटगांव बलौदा बाजार से रामदुलार साहू और नीलिमा साहू, लच्छनपुर से जीवनलाल रजक, सरोजनी और रामजी, मोहाली से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा।

आशिकी। यह इस फिल्म का नगमा फनकार हैं कुमार सानू। सुनने के ख्वाहिशमंद सरायकेला गांव कीता से राधा कृष्ण गोप, अमित, अंकित, सुमित, अभिषेक और विक्की गोप, राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता रुद्र और रिद्धि गुप्ता।

अनजाना कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं इस फिल्म का गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। सुनना चाहते हैं मंझारी से बसंत बेंकुरा, हेमंत पात्रो, सुलोचना पान, कौशिक, दीपक, रिंकी, रूपाली और पीताम्बर। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया।

इस गीत के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आपकी पसंद कार्यक्रम। यह आकाशवाणी चाईबासा है एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा।

पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त
3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है ताकि उर्वरकों की

कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8 से 10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5 से 6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी NBS योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है, उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख

0: किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। पेश खिदमत है आज का रजनीगंधा प्रोग्राम। इसमें सबसे पहली फरमाइश, फिल्म का नाम है आवारापन, गुलकारा हैं सुजैन डीमेलो। सुनना चाहते हैं ग्राम पजौनिया जालौन से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, आदित्यपुर से नंदलाल गागराई, सुरेश लक्ष्मी और सरस्वती गागराई।

दलाल। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश

दिल है कि मानता नहीं। कार्यक्रम रजनीगंधा की ये अगली पेशकश, फिल्म का शीर्षक गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में सुनने के ख्वाहिशमंद हैं महुलडीहा सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि, रवि बारी, दीपक, राहुल, आयुष, अनु और नंदू महतो। न्यू कॉलोनी टुंगरी से पंडित आर के पाठक, अनिता मिश्रा, रिया और प्रिया पाठक। नागपुर से लिखते हैं इलियाजर इब्राहिम, उज्जैनी अब्राहम, एलन, ग्लोरी, एलेक्स, जोजफ और अविनाश।

बाजीगर। यह इस फिल्म का शीर्षक गीत, आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की। सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ और शाइना शर्मा। बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक और श्यामदेव नायक।

बलमा। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं टाटा कॉलेज कॉलोनी चाईबासा से डॉक्टर धर्मेंद्र रजक, डॉक्टर भाग्यश्री कर, श्रीमती रामपति देवी, आशा कुमारी और गुनू। बादुरी गांव से कैलाश कुदादा, नारायण कुदादा, कृष्णा, बसंत, मोहन और ज्योति। भाटापाड़ा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक वर्मा। न्यू कॉलोनी टुंगरी से पंडित आर के पाठक अनिता।

इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का रजनीगंधा कार्यक्रम। यह आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 होंगे और आप सुन सकेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जिसका अनुप्रसारण होगा हमारे आकाशवाणी चाईबासा केंद्र से।

परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी

0: 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
3: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
4: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
6: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना

0: कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल। पेश खिदमत है गजलों का हमारा ये कार्यक्रम। इसमें आज के फनकार हैं हरिहरन।

कार्यक्रम महफिल में आज के फनकार थे हरिहरन। सुरों के रंग, इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म मुसाफिर का यह नगमा संजय दत्त की आवाज़ में।

इस देश में हर हिंदुस्तानी का फेवरेट टाइम पास है गाना और बजाना, और ना ही तो गाने के लिए रुकेगा ना बजाने के लिए लेटेगा, लेकिन वो साला

0: क्या करता बॉस, पब्लिक की डिमांड थी तो बिल्ला को आना ही पड़ा। कहानी खत्म होने को आई और अब तक साला एक्शन शुरू ही नहीं हुआ। अब मैं आ गया हूं ना, अब दिखा दो तमाशा, दिखा दो तेरे को बेपाशा, समझा?
1: शामीन अब सुनते हैं फिल्म साया का ये नगमा। युगल स्वर हैं के और श्रेया घोषाल के।

सनम रे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत। मिथुन अरिजीत सिंह और अनुरुद्ध भोला सिंह।

इस गीत के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का कार्यक्रम सुरों के रंग। हम आकाशवाणी चाईवासा से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the UPSC. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
3: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
2: Spokesperson of CJP, Ashutosh Ranga, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Bellary-Gundakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometers. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. He also informed about Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing three dedicated chemical parks in the country. Both the Houses of Parliament were adjourned till Monday following ruckus for the fifth consecutive day today over the issues of NEET paper leak and student protests. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leak case, the opposition continued its protest demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is ready to discuss the NEET paper leak issue from day one. He said due to certain conditions imposed by the Congress, the discussion could not take place. President Draupadi Murmu met Romanian Prime Minister Ilie Bolohan in Bucharest today and held fruitful discussions on advancing the India-Romania partnership. The two leaders reviewed bilateral ties and discussed ways to strengthen cooperation in trade, investment, clean energy, connectivity and emerging technologies. Delhi police has refuted fake news circulating on social media claiming that Delhi police has imposed a ban on food delivery app services across New Delhi area. In a social media post, Delhi police said that this claim is completely false, baseless and misleading. It said that the Delhi police has not imposed any ban on the delivery services in New Delhi area. And in shooting, India's Sanyam won the silver in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou, China, opening the country's medal account at the tournament. 22-year-old shooter scored 243.4 in the final to secure a podium finish against a strong international field. And that is the end of this news bulletin.
4: एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चाईवासा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। आज की सभा संपन्न होती है। कल की सभा में प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दें। शुभरात्रि। जय हिंद।